ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। हमने ही इन हूरों को पैदा किया तो इनको कुंवारी बनाया, और शौहरों की प्यारी और हम उम्र यानी दाहिने हाथ

ये बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से, और बाएं हाथ वाले, अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे, यानी दोजख की लपट और खौलते हुए पानी में, और सिया धुएं के साए में जो न ठंडा होगा और न खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफ्र पर अड़े हुए थे और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए तो क्या हमें फिर उठना होगा, और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी। कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे। तो

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. फारवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 आई 0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर, FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
2: मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-15-5724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فبدأ شروع کیا بأوعيتهم ان کے تھیلوں کے ساتھ قبلہ پہلے وعائی تھیلے کے اخی ہی اپنے بھائی کے وعا کی جمع ہے اوعیہ ایسا برتن یا تھیلا جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جائے کان کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا وعائیہ وعا وعا برتن جس میں کوئی چیز محفوظ رکھی جا سکے تو اس نے اپنے بھائی یعنی بنیامین

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह आज ही 111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शराइत जवाब

0: बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
1: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: बराबर।
1: इट्स 10 AM दिस ड्यूटी क्रीम नेशनल पार्क
2: जेके हथियार बंद हुआ उन्होंने रोड ते खजी जो जेको आ हड़े विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा ए मां उनी गोलाई टन डिया पे उनी नरे बाग चौक का तकरीबन 6-7 मानू उन टाइम ते उते मौजूद हुआ। मां उनके गाड़ी एक हथियार बंद के गाड़ी हिट करने की कोशिश कई जेकी गाड़ी मुझी हेठे सारन जे फसल में लही बंद थी वही ए बाद में उन दरियो खोले मुख्य बाहर कडियो ए मुझी तलाशी वरती। कारण यो है तो भोतारन के खिलाफ लिखे तो भोतारन के खिलाफ छो लिखे तो लागी तो ही लिखंदो अचे तो भोतारन की सलामी न भरी है जो मास्टर माइंड उनके फोन ते ये गाल करे रहे हो।
1: KTN न्यूज कानपुर महर जो रिपोर्टर अजीम सियाल शिकारपुर मां बाजियाब धाड़ेल अजीम सियाल के छड़े फरार। अजीम सियाल रस्तन खां ऑपरेशन दौरान जे घरन के लगातार सियाल पिण मुगवी साफी जी जान अगवाड़ेलन सां वक्त अचण ते उन्हनि जा नाला जाहिर कंदस। धाड़ेलन धमकियूं ॾिनियूं आहिनि त संदन सहूलतकारनि जा नाला ऐं कुटुंब खे क़तल करे छॾींदासीं। इन खां पोइ नापरको बाजियाबी बाबति केटे ख़बरूं नशर थियण बाद शिकारपुर पुलिस जागी पई।
3: शुक्रिया।
1: SSP शिकार पुलिस जी करे बाजियाबी अमल में आई कार्रवाई दौरान धाड़ेल अजीम सियाल के छड़े फरार थी वया। पुलिस जी यह भी आए सिंध पुलिस रत जे जान ए माल लाइ विणंदी रहंदी।

सिंध पुलिस साफ़िन ऐं शहरनि जे तहफ़ुज़ लाइ पंहिंजूं ज़िमेवारियूं अदा कंदी रहंदी। अज़ीम सियाल जे अॻवा ख़िलाफ़ सॼे सिंध में साफ़ती तंज़ीमनि पारां एहतजाज कयो वियो। घोटकी, नौशेरो, फिरोज़ गम, भट, उबावड़ो, मीरपुर, माथेलो, ठरी, मीरवा, चक, बख्शापुर ऐं बान सैदाबाद में एहतजाज कयो वियो। सखर, जरवार, खैरपुर, दोदापुर, कुंभ दड़ो ऐं तलहार में बि कलमधड़ियुनि एहतजाज कयो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला बीएड अढ़ाई साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथन मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।
2: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील माह से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम, दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105-109, 03000-3105-109।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पत इसलिए 569

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी

0: ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राबते दे लाए 03-20-18-00-003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे
2: अदा? दु कराई थई
1: न अदा
3: यार, आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली
1: बे डरन दी। अदा
3: जी मेरा पे हालाणी रोड में
2: ते लाए हक
4: 03-01-32-836।
5: के हो तो है

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते, पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: हथे गुल मेंदी पेरे गुल मेंदी।
2: आई अदी, अज तो डाडी खुश पे नजर अची।
1: छो न खुश थे अदी, जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वालन जो चारो मसालो खरायो आहे, त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे, ए हाणे पैसा भी बीणा था अचन। ही दिस सोनियो चूड़ियो
2: तमा ब वनी चवा उनके त ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए।
3: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460-1100
4: उम्मीद के दिए जलते हैं
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर 0301-3865-453
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बे डरंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 11 AM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन सत दहशतगर्द मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रिए मूजिब केपीए जे बाड़ा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनल खार जा पंज दहशतगर्द मारिजी विया बलूचिस्तान में चागे जे इलाइक़े नोकचा में ऑपरेशन दौरान ब दहशतगर्द मारिजी विया मारिजी वियल दहशतगर्दन वटां वॾे अंग में हथियार हथ सिक्योरिटी फोर्सेस मूजिब बलूचिस्तान ऐं केपीए मां आख़िरी दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं कारियूं जारी रहंदियूं।

चौके ते पहुंचण ताईं एसएसपी शिकारपुर अणजाण रहियो। अज़ीम सियाल कच्चे में मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदो नापरकोट चौकी पहुतो। अज़ीम सियाल चयो त हक़ सच लिखण तां भोतारनि खे सगवा करायो। मास्टर माइंड लगातार धाड़ेलनि सां राब्ते में हो, वक़्त अचण ते उन्हनि जा नाला ज़ाहिर कंदसि। धाड़ेलनि धमकियूं डि॒नियूं आहिनि त भोतारनि ऐं संदनि सहूलतकारनि जा नाला खयां त खेसि ऐं कुटुंब खे क़तल करे छॾींदा।

0: मरीअ में स्कूल वेन खाईअ में किरी पई, 10 खां वधीक ॿार ज़ख़्मी, टिनि जी हालत ॻणती जोॻी। पुलिस जो चवणु आहे त ब्रेक फेल थियण सबबि स्कूल वेन में खाईअ में किरी पई। ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद लाइ इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो।
1: अमेरिकी सदर ईरान जा ज़ब्त असासा बहाल करण वारी ख़बर रद्द करे छॾी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण ऐं ईरान ते लॻियल पाबंदियूं हटाइण बाबति ईरान खे आछ न कई आहे। फौरन हटाइण घुर्जे।
0: चकगड़ी ते गोजे कचे में पुलिस ऑपरेशन दौरान 3 जणा मारिजी विया, औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 5 जणा ज़ख़्मी। ॻोठ इमामदीन मीरानी में पुलिस जे ड्रोन हमले में 3 जणा मारिजी विया, औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 5 जणा ज़ख़्मी। मारिजी वियलनि में चक जे ग़रीब आबाद पाड़े जा रहवासी मुनीर मीरानी, हसन मीरानी ऐं अलीज़ा शामिल आहिनि।
1: म्यांमार में फ़ौज जो बाग़ी ग्रुप जे कंट्रोल हेठि इलाइक़े में फिज़ाई हमिलो, 33 ॼणा मारिजी विया, 36 ज़ख़्मी। बरतानवी ख़बरू इदारे रूटर्स मूजिबि म्यांमार जे फ़ौज बंगलादेश जे सरहद भरिसां राखिन रियासत में हिकु बाज़ार ते हमिलो कयो। बाग़ी ग्रुप राखान आर्मी जो चवणु आहे त हमिले में 33 ॼणा मारिजी विया आहिनि। राखान बाग़ी ग्रुप म्यांमार फ़ौज ख़िलाफ़ वेढ़ में मसरूफ़ आहे।

0: तॾहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद मौजूद आहे मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ farwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम शाम 5 वॻे आसीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम कॉलोनी खैर मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद मेहरापुर
1: 0300-5569 जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03200180003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM
3: राबते लाए हाक
4: 03013 0315 724
5: आपुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते FM 94

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज़ थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836
7: मोहम्मद उमेर गोरी 0315-1524
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur Atlas Honda Motorcycle Group per Etmat Aimba Akhtar 3S Dealer Aashiq Honda Motors Mehrapur Jite nai motorcycle ji sale Company aje mukarar kel rate te dastiyab hai Service Center Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center Service Area Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi hai Honda Company aja tamam genuine spare parts khususi riayat te maujood Aashiq Honda Motors te pehje Honda Motorcycle ji tuning karayo Computerized Japanese Stitching Machine je zariye jehme mile thi motorcycle ji karkardgi tamam better fuel adjustment RPM ji adjustment computerized Japanese machine zariye kaiwane thi Honda je qualified technician je zair nigrani Aashiq Honda Motors address Indus bypass Nast Railway Line Mehrapur Rabte jilai Asim Hussain Arai 0307 3592120
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

केपीए बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन सत दहशतगर्द मारजी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब केपीए जे बाड़ा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनल ख़ारिज जा 5 दहशतगर्द मारजी विया। बलोचिस्तान में चागे जे इलाइक़े नोचका में ऑपरेशन दौरान 2 दहशतगर्द मारजी विया। मारजी वियल दहशतगर्दन वटां वॾे अंग में हथियारत। सिक्योरिटी फोर्सेस मूजिब बलोचिस्तान ऐं केपीए मां आख़िरी दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं कारवायूं जारी रहंदियूं।

0: 30 मिंटनि ते मां पहुतो आहियां नरो बाग चौक हुन चौक ते पहुतो आहियां त हुते जेके हथियारबंद हुआ उन्हनि रोड ते खजी जो जेको आहे फड़ विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा ऐं मां उन गोलाई टन ॾियां पियो उन नरे बाग चौक खां तक़रीबन 6 खां 7 माण्हू उन टाइम ते हुते मौजूद हुआ। मां उनखे गाॾी हिकु हथियारबंद खे गाॾी हिट करण जी कोशिश कई जेकी गाॾी मुंहिंजी हेठि सारनि जे फसल में लही बंदि थी वई ऐं बाद में उन दरियूं खोले मूंखे ॿाहिरि कढियो ऐं मुंहिंजी तलाशी वरिती। कारण इहो आहे त भोतारनि जे ख़िलाफ़ लिखे थो, भोतारनि जे ख़िलाफ़ छो लिखे थो, लाॻीतो ही लिखंदो अचे थो, भोतारनि जी सलामी न भरींदो आहे जेको उहे मास्टर माइंड हो उन्हनि खे फोन ते इहे ॻाल्हियूं करे रहियो।
1: KTN न्यूज खानपुर मां अर्ज रिपोर्टर अज़ीम सियाल शिकारपुर मां हथ SSP बाज़ियाबी पुलिस जी महिनत करार ॾेई छॾी। धाड़ेल अज़ीम सियाल खे कोट शाहू थाणे जे हद शेरगढ़ पिकट वटि छॾे फरार थी विया। अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबीअ खां पोइ नापरकोट पुलिस चौकीअ ते पहुचण ताईं SSP शिकारपुर अणॼाण रहियो। अज़ीम सियाल कचे में मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां थींदो नापरकोट चौकीअ ते पहुतो। अज़ीम सियाल चयो त हक़ सच लिखण तां भोतरनि खे सगवा करायो। मास्टर माइंड लगातार धाड़ेलनि सां राब्ते में हो, वक़्तु अचण ते उन्हनि जा नाला ज़ाहिर कंदुसि। धाड़ेलनि धमकियूं ॾिनियूं आहिनि त भोतारनि ऐं संदनि सहूलतकारनि जा नाला खयां त खेसि ऐं कुटुंब खे क़तलु करे छॾींदासीं।
2: मरी में स्कूल वेन खाई में किरी पई, 10 ॿार जख़्मी, टिनि जी हालत गणती जोगी। पुलिस जो चवण आहे त ब्रेक फेल थियण सबबि स्कूल वेन में खाई में किरी पई आहे। ज़ख़्मीनि खे ॿारनि खे तिबी इमदाद लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो वियो।
1: अमरीकी सदर पारां ईरान जा ज़ब्त असासा बहाल करण वारी ख़बर रद्द करे छॾी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण ईरान ते लॻल पाबंदियूं हटाइण बाबति ईरान खे आश न कई आहे। इहा ख़बर कूड़ी आहे। न्यूज़ वेबसाइट खे इहा ख़बर फौरन हटाइणु घुर्जे। तमामु जल्द तेल जे अघनि में लाह थींदी।
2: चक भरसा मोबेना पुलिस ऑपरेशन दौरान 3 ॼणा मारिजी विया। गढ़ी तेगो वारे इलाइक़े में औरतनि ऐं ॿारनि समेत 5 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ इमामुद्दीन वीराणीअ में पुलिस जे ड्रोन हमले में 3 ॼणा मारिजी विया, औरतनि ऐं ॿारनि समेत 5 ज़ख़्मी। मारिजी वियलनि में चक जे ग़रीबाबाद पाड़े जा रहवासी मुनीर मीराणी, हसन मीराणी ऐं अलीज़ा शामिल आहिनि।
1: लाड़काणे कंदकोट में फायरिंग जे वाकियनि में 2 ॼणा क़तल। लाड़काणे जे सिविल लाइन थाणे जे हद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में फिदा हुसैन बुलेदी क़तल। वाके जो कारण मालूम न थियो। कंदकोट में अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में मोहम्मद ख़ान मारिजी वियो। लाश ज़रूरी कार्रवाईअ खां पोइ इस्पताल मुंतकिल।
2: सिंध में 9 महीननि दौरान 35 ॼणा फोत थी चुका आहिनि। कराची जे 10 वॾनि इस्पतालनि में 9 महीननि दौरान कुतनि जे चक जा 45,000 खां वधीक केस रिपोर्ट कया विया आहिनि। कराची जे ॿियनि इस्पतालनि में पिण 9 महीननि दौरान कुतनि जे चक जा 7,000 खां वधीक केस साम्हूं आया आहिनि।
1: कराचीअ में सीवी बसां लांच ऊंधी थियण सबबि

0: म्यांमार में फौज जो बागी ग्रुप जे कंट्रोल हेठ इलाइक़े में फिज़ाई हमलो टेटीह ॼणा मारिजी विया छटीह ज़ख़्मी बरतानवी ख़बरू इदारे रूटर्स मूजिब म्यांमार जे फौज बंगलादेश जे सरहद भरिसां राखिन रियासत में हिकु बाज़ार ते हमलो कयो बागी ग्रुप राखान आर्मी जो चवणु आहे त हमले में टेटीह ॼणा मारिजी विया आहिनि राखान बागी ग्रुप म्यांमार फौज ख़िलाफ़ वेड़ में मसरूफ़ आहे
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साल बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौको हथन मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाई फाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ फॉरवर्ड कॉलेज डॉट पी के वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बण पहिरियों कदम वधायो खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 41 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर जानवर जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो।
1: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और की महा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्त।

0: प्यार इदारो इर्शाद ऑटोस एंड होंडा शोरूम महरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इर्शाद ऑटोस हालानी रोड महरा पर राबते जे लाए 03-20-18-00-003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज़ पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज़ थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: सोनी अॼु त ॾाढी ख़ुशि थी लॻे
2: हा साईं ॻाल्हि बि अहिड़ी आहे
1: भला मूंखे बि ॿुधाए कहिड़ी ॻाल्हि आहे
2: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज़ ख़बर पियो आहे
1: छा छा
2: उहे पंहिंजे ढोरनि खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइनि हीअ चारो ढोरनि जो हाज़मो दुरुस्त करे थो ढोर सिहतमंद थियनि था गोश्त सां गॾो गॾु खीर बि वधे थो
1: वाह सोनी वाह वाह जी ॻाल्हि ॿुधाई पर किथे मिलंदो इहो जी जान सखर चारो मसालो
2: साईं रेडीअ ते था ॿुधाइनि ॿुध अची वठी अच
1: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं
2: हा साईं हा
3: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो
4: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: This program is brought to you by
5: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing
6: khoobsurti ka asal raaz sirf D Skin Beauty Cream इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
7: उम्मीद के दिए जलते
8: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
0: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
10: आ अंगन जी तू कयो गदी दी गुजारूंगा اسلام علیکم ادا.
11: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
10: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
11: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
10: نہ ادا.
12: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
10: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
11: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
10: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
12: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
11: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
13: 0301-399-2836.
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला बीएड अढ़ाई साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो। मेहराबपुर ऐं भरपासे जी आवाम लाइ खुश ख़बरी, पेट्रोल जे ख़र्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे ख़र्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर

क्राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क क्राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क क्राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क क्राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क क्राइस ब्यूटी सोप, मिल्क क्राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000310509, 03000310509।

0: में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: इते डंदन जी सफाई, रूट कैनाल मुंह जो न खुलण, वात जो अल्सर, डंदन

असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक

नैनो बीट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जी क्या बात है, आप सुन रहे हैं वाइटेशन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताने के लिए सामने प्रोग्राम हो सकते हैं जनाब और किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात बताने वाली वो ये कि भैया आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, यानी कि आज आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है। तो अगर सवाल की बात करें तो मेरा आज आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए जरा कि अगर नींद पैसों से मिलती तो आप अमीर होते या फिर गरीब होते। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत ज्यादा नींद करते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है वो थोड़ी सी नींद करते हैं, बस 2-3 घंटे नींद करके उनको लगता है कि बस हो गया हमारा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज कर लीजिए नींद जो है वो पैसों से मिलती तो फिर आप अमीर होते या गरीब होते मुझे बताइए जल्दी से। मैं जानना चाहूंगी अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, बिल्कुल जनाब सर्च करेंगे जी लाड़काना FM 88.8 तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर आइए आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए भाईजान के यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के चर्चे हो रहे हैं और आपके थोड़े बहुत से खर्चे करा रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने वाले हैं तो मुझे जल्दी से बताया करें ताकि हमें पता चले कि हमारे जो इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ मौजूद हैं ये भाईजान डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, क्योंकि भाई बता दिया करे, इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है। और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर तो उसके लिए आपको नंबर्स के ऊपर रब्ता करना चाहिए, नंबर्स के ऊपर रब्ता किया करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल हो सके। तो जल्दी से नंबर को डायल कीजिए जो है जनाब 03-12-50-25-907 बुरी 312 50-25-970 एंड यो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुरी 332 73-84-309 ही नंबर आए जो तुम्हारा डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश बिल्कुल जी तुम्हारा पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो और पांजे खूबसूरती में इजाफो आणियो ई तुम्हारा भी सोना थियो बाबा तुम्हारा डो कयो अच्छा भला केंजो तुम्हारा भी खूबसूरत थी सगो था ई तुम्हारा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सगो था। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और साथ ही साथ मुझे बताइए कि अगर नींद पैसों से मिलती तो आप अमीर होते या फिर गरीब होते। इस सवाल का जवाब दीजिए, हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर अब्दुल रजाक कुंभर हमारे साथ मौजूद है। ओके जी, मोहम्मद खान कुंभर हाली पोटो स्टाफ मीरपुर खास का तमाशा के ज्वाइन करवाए सो मोहब्बतों प्यारे सोने भाजू फरवा गुल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। हाय आपी, मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ आप हमेशा हंसी मुस्कुराती रहें, थैंक यू। आई वरी फरवा तमा गाने जी फरमाइश कई मैं दिसां थी तुम जो गानों हलाइंदा सी। और अब्दुल रजाक कुंभर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप मीरपुर खास से हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। इकबाल लाशारी मीरपुर खास से हमारे साथ मौजूद, इकबाल भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। शाजिया अली हमें सुन रही है, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। ओके जी, शाजिया को भी वेलकम कर देते हैं और इसके साथ साथ जैन अली हमारे साथ हैं। जैन अली लिखते हैं कि नजर मुझसे चुराई जा रही थी, ना जाने क्या छुपाए जा रही थी, वो मेरा दोस्त है और कुछ नहीं है, मुझे पागल बनाए जा रही थी, तेरे पहलू में कोई अजनबी था, मुझे ये बात खाए जा रही थी, मेरे सर पर वो रखकर हाथ अपना कसम झूठी उठाए जा रही थी। अरे भाई ये तो बड़ा मसला हो गया, आप ऐसा कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और फहीम भाई हमारे साथ कहते हैं, रूह के बल जियां वकोड़े थी, जी सा जी छात जोड़ियो थे, चूड़ियों चंड्र जियां टुटियों आहिन, बहां के एतरो तमोड़ियो थे, प्यार खां कोन थो मुड़ी अज भी केतरो ए अयाज लोड़ियो थई शेख अयाज जी शायरी तमा शेयर कई के ते अदा छा हलाए खुशायो सफा चाकु सलेट कलम मस्ती डबे प्रोग्राम सफा लशपश वाह वाह आहे तमा जिया थैंक यू सो मच प्यारा भा तमा जो मोहब्बत वाइन प्रोग्राम में शामिल आयो आई पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो टॉपिक के फॉलो कयो निजाम भट्टी कादरी भाइयों में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम मटियारी का तमा सके ज्वाइन कयो आहे तमा जो भी मोहब्बत वाइन सागर में सुन रहे हैं सागर खत्री भाई वेलकम आप हमें सुन रहे हैं पंजाब इंडिया से ओके जी इंडिया से आपने हमें ज्वाइन कर दिया है सागर भाई आपको वेलकम कर देते हैं बहुत शुक्रिया के साथ आप हमारे साथ और अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं लोट जाम खान लगारी से कहते हैं सिस्टर अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप शो तमाम नाई से सॉन्ग हाँ बिल्कुल तांगे गानों बुधरायूं था डेडिकेट कयो आहे अजहर लगारी आकिब लगारी आसम लगारी आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर इमाम बख्श खोखर खालिक लाशारी सिस्टर ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है सिस्टर हाँ जी ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है अच्छा सागर भाई कहते हैं अरे जी सिंह का गाना लगा दे मेरे नाम कीजिएगा कोई भी सागर भाई वो क्या है ना कि हम पाकिस्तान में जरा इंडियन गाने नहीं लगाते हैं हम तो आपको जरा मैं कोई अच्छा सा पाकिस्तानी गाना लगा दूंगी ठीक है आप सुन लीजिएगा फरवा कहती है कि आप ही आप किसी तारीफ की मोहताज नहीं है आपको सारा वर्ल्ड जानता है आपका शो सुनता है अल्लाह जाए बुधाई था खबर को नहीं मुखे हिदायतुल्लाह भाई हमारे साथ है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हो मुस्कान ये कॉपी सॉन्ग है तो अच्छा ठीक है लिंक शेयर कीजिए लगाते हैं आपके लिए और फहीम भाई कहते हैं कि टॉपिक आप हमारे सवाल को इग्नोर कर देते हो इसीलिए हम भी टॉपिक भाई आपने कहा मेरा कहा आपने सवाल भेजा है जो मैंने इग्नोर किया है और फलक अली हमारे साथ मौजूद है फलक कहती है टॉपिक ना ही इतने पैसे हैं जो नींद खरीद कर सुकून लेकर ले हम इसीलिए हम मैं गरीब रहूंगा अच्छा यानी कि नींद आपको लग रहा है कि इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है अच्छा चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं हाउ आर यू बेटा सिडो बट आई एम नॉट वेल क्या हुआ चाचा आपको तबीयत आपकी अभी तक ठीक नहीं हुई क्या और आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए यहाँ पर टाइम हुआ है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपका हमारा साथ जो कि पूरी पूरी 3 बजे तक का होगा तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बता दें दुनिया को कि आप भी खूबसूरत हो सकते हैं आप भी अपने चेहरे को चमका सकते हैं आप भी हमेशा के लिए खूबसूरत रह सकते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए
1: It's 1:30.
2: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि तिलाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 एंड फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 ऑटोस मेहरापुर नालो आहे एतमाद जो

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया भला इहो त बुध अई वठी अच
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हां भाग भरी चंगो थो लगे मा हाणे ही थो वठी अचा।
5: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
6: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1-1-1-4-7-5-2-6-4 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
7: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो, मीरपुर खास मटियारी, सकरन मेहरापुर मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है ये इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है। तो अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो हमारे साथ जरूर शेयर किया करें ताकि हमें पता चले कि भाई आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पर जितनी भी खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद है उनको भी बताते चले जनाब कि आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऐसा है कि भाई आप इसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हर स्किन के ऊपर, आपकी स्किन किसी भी तरह की है, किसी भी टोन की है, आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और उसके साथ साथ आप चाहे मर्द हजरात हैं, आप खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज जो है ना वो इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट सबसे पहली बात जनाब ये मेडिकेटेड फार्मूला है और जो मेडिकेटेड फार्मूला होता है ना उससे ये चीज तो वाजे हो जाती है कि भाई उसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है और हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो मेडिकेटेड जो फार्मूला होता है ना उसे वो डॉक्टर्स तैयार करते हैं जो भाई आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले ईजाद करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी स्किन के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो अच्छा तो हो लेकिन सेफ भी हो साथ साथ, जो आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं ना तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है। वो क्या कि भाई जनाब अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने के लिए जाएं और वहां पर आप लोगों को ऐसा हो कि भाई वहां पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं हो लेकिन दुकानदार आपको कोई सा भी प्रोडक्ट पकड़ा दे और बोले कि भाई जान ये ले जाइए ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम से ज्यादा अच्छी है, तो आप उसे बदले में सिर्फ यही बोलिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर आपको निशानी में बताती चलूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की निशानी जो है वो है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बी के ऊपर एक डॉक्टर माई का फोटो। यस डॉक्टर माई जो फोटो आए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी डब्बी जी में था, अगर तुम्हें भी चाहिए था तो तुम्हें की निशानी खबर हो जाए तो तुम्हें डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी यह निशानी याद रखो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी में था डॉक्टर माई जो फोटो आए समझी वया आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी का वडन वडन अखरन सा लिखल अथस। तो बिल्कुल तव्हां अगर केतिरा बि मासूम आहियो, तव्हां अगर सफ़ा बि पढ़ियल न आहियो त तव्हां एतिरो त ख़बर पइजी वेंदी तव्हांखे त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी सुञाण तव्हां कीअं करे सघो था। बाकी आसानी तव्हांजे लाइ करे छॾी आहे त तव्हांजे लाइ हर जॻह ते असां अवेलेबल कराए छॾी आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अगर न बि तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते मिली रही आहे त कोई तव्हांखे नंबर बि ॿुधायो वञे थो प्रोग्राम में जंहिं ते तव्हां राबितो करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराते रहिए और ज़रा अपना ख्याल रखते रहिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये आपकी खूबसूरती में इस तरह से इजाफा लाते हैं क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि खूबसूरती हर किसी ख्वाहिश होती है लेकिन ये वाला सीन भी हो जाता है जनाब, खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिल्द की केयर जो होती है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और कुछ लोगों को पता नहीं होता कि भाई हम अपनी स्किन की केयर कैसे कर सके या फिर खूबसूरती का ख्याल कैसे रखा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं और आप जरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए कौन सा नहीं लगाना चाहिए और आपको अपने चेहरे की मुनासिब सी केयर भी करनी है। तो आप लोगों के लिए हाजिरी खिदमत है जनाब एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट जिसका नाम है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए जनाब, ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है। आपके जिल्द को नरम और मुलायम रखने के लिए आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखेगी और आपकी जो स्किन है ना वो इस तरह महसूस होगा आपको कि भाई वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगा के देखे लेकिन जब आप कुछ अच्छा इस्तेमाल करते हैं ना तो वो चीज वाजे आपके चेहरे पर नजर आती है कि हाँ आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन प्रोडक्ट्स में शामिल है जो कि आपकी स्किन के लिए फायदा ही फायदा है जनाब। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रोबीट्स हैं, अल्फा अर्बोटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई और वो इसलिए ऐड की गई है ताकि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो क्वालिटीज है ना वो इस तरह हो जाएंगे भाई आप लगाएं तो आप कहें आए हाय मजे ही आ गए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट्स की एडिशन की गई है ना इसका ये मतलब है और इसको इसलिए ऐड किया गया है ताकि आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिले वो ऐसे मिले जैसे आपने कोई मेगा सा फेशियल कराया हो क्योंकि
डे स्किन ब्यूटी क्रीम बाजार तो एक नाइट क्रीम है, लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम के साथ साथ एक फेशियल का रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट भी है। तो अगर आप भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ प्रीमियम सा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके आप अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले हैं, और सिर्फ वो भी 2 रातों के इस्तेमाल से। क्या बात है भाई, इतना कमाल धमाल सा प्रोडक्ट आज तक आपने नहीं इस्तेमाल किया होगा। अगर आप भी चाहते हैं भाई आपके पास कुछ अच्छा होना चाहिए, आपकी स्किन जो है वो सेफ होनी चाहिए, आप अजीब तरह के प्रोडक्ट से जरा बचे रहें, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए। ये मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब 2 रातों में आपको रिजल्ट देने वाला फार्मूला है। ऐसे मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और ये बिल्कुल सेफ है, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि इसे डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। तो बिल्कुल जी सेफ है, मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, नॉर्मल हो, हर स्किन के ऊपर आप लगा सकते हैं जनाब जी, तो लगाइए ना, क्या सोच रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपने किया है तो आपको रिजल्ट्स कैसे मिले हैं ये हमारे साथ शेयर जरूर किया करें। और इसी के साथ साथ अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे अवेलेबल कराएंगे, तो भाई आपको नंबर बताऊंगी, उसके ऊपर आपने बस रब्ता करना होता है। और नंबर है, जरा नोट कर लीजिए, बिल्कुल जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25 970। आई बियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बुड़ी 3-72-74-309 नंबर सां जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था। सो बाबा अवेलेबल कराईंदा रहो ऐं खूबसूरत थींदा रहो, छो त हाणे खूबसूरती जेका न आसान थी वई आहे तव्हां जे लाइ। मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम जहिड़ा प्रोडक्ट अची विया आहिनि बाबा, सो टेंशन छा जी, तव्हां अॼु ई वञो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे परचेज करे अचो। इन खां अलावा तव्हां इस्तेमाल बि कयो पिया त असांखे लाज़मी ॿुधाइजो, जीअं ॿुधंदड़नि खे ख़बर पए त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तव्हांजी स्किन जे लाइ केतिरो फ़ाइदेमंद साबित थियो आहे। अॼु मां खां सवाल पुछो आहे त मूंखे ॿुधायो, अगरि निंड पैसनि ते मिले हा त तव्हां अमीर हुजो हा या वरी गरीब हुजो हा, ऐं तव्हां मूंखे 888 फेसबुक ते ज्वाइन कयो पिया, तव्हांजा बिल्कुलु फीडबैक्स मूंखे मिलंदा वञनि था। फीडबैक्स त बिल्कुलु तव्हांजा असां शामली प्रोग्राम रखंदासीं, पर हिते तव्हांजे लाइ मज़े मज़े जा गाना रखिया आहिनि, सो उहे केरु ॿुधंदो, असां ॿुधंदासीं बाबा। अचो त ख़ूबसूरत गानो ॿुधूं, तव्हांजे नाले आहे जेके जेके असांखे ॿुधो पिया। प्रोग्राम आहे वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

जी मिठड़ो जेको आ वणी वयो आहे छो त मिठड़ो अॼुकल्ह डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे पियो अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था त लाज़मी कजो ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद है हजार का जतोई भाई में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं भाईजान ठीक ठाक मजे में हाँ जी हिदायतुल्लाह मैंने देख लिया था आप भी देखिएगा हजार भाई कहते हैं कि हम भी आपके शो में आपके साथ हैं बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है मैं तो अमीर होता अल्लाह यानी कि तमाम घटन इंटर कंदा आयो मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ कहते गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी वेलकम टू यू कहते अर्ज किया है ठहर ठहर कर खुदारा कलाम कीजिए ना उदास शब का भी कुछ एहतराम कीजिए ना सुना है आपकी आंखों सुना है आपकी आंखें जो है वो बादशाही आंखें हैं नजर उठाइए हमको गुलाम कीजिए ना अल्लाह रे नजीर कोसो भाई मैं सुन रहे हैं बलूचिस्तान से भाईजान आपको वेलकम हो गया लिखते हैं कि दूसरी तीसरी दसवीं और लाख मर्तबा ये बात याद रखें किसी भी चीज के होने से पहले उससे हरगिज ना डरे और अपनी सोच और खौफ को गैब के इलम में है हमेशा खैर की उम्मीद रखें हमेशा अल्लाह पर तवक्कल करें और जान लें कि जब बंदे पर कोई आजमाइश नाजिल होती है तो उसके साथ अल्लाह की मेहरबानी और लुत्फ भी नाजिल हो रहे होते हैं बिल्कुल आपने सही फरमाया बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ही आपको वेलकम कहते हैं बिल्कुल जी पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें कंजूसियां इस मामले में नहीं बनती चाचा खालिद कहते हैं नींद तो हमसे रूठी हुई है बेटा सदियों से हम तो गरीब हैं इस मामले में ये टॉपिक आंसर फिर तो आप अमीर होते ना अगर नींद पैसों से मिलती तो आप तो सोते ही नहीं है तो आप अमीर होते लॉजिक लगाया करें अरे शाजिया आपका गाना लगाते हैं जी सबर कीजिएगा वही भाई कहते कि अदा नाराज न थी जा भाई मुखे खबर आए सिंधी शायरी में थोड़ी अजीब करी वेंदी है एहसन अली भुक्टी हमें सुन रहे हैं भाईजान वालेकुम अस्सलाम अख्तियार अली गब्बर भाई हमारे साथ मौजूद हैं विलेज उस्मान गब्बर से जबरदस्त प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई तालिब मरी समारोह हमें सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया

बात है ना, मुझे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ना तो आप यकीनन खूबसूरत हो जाएंगे, खूबसूरती के मामले में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो अगर आप ही खूबसूरत होना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो जो नंबर आपको बताया ना उसके पर रابطہ लाजमी कीजिएगा। नंबर डायल करने के साथ ये हो जाता है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस्तेमाल कीजिए। और जानिए कि मैं इतना क्यों बताती हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अच्छा, यहाँ पर दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी, कैसी हो? माशाल्लाह बहुत प्यारा शो, थैंक यू वेरी मच स्वीटी। अच्छा फरवा कहती है टॉपिक आप ही में गरीब होती, अल्लाह। अच्छा फलक अली हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये सॉन्ग प्ले कीजिएगा, आई विल ट्राई। बैठी आप अपनी सीट पे, आपका गाना लगा दिया जाएगा। मोहम्मद जमान कहते हैं ना गरीब ना अमीर, ओनली निंड लवर। हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा दर्दे दिल ने लिखा है कि इंसान की सच्ची पहचान उसके मुश्किल वक्त में दिखाई जाने वाले रवैये और सब्र से होती है। बिल्कुल आपने सही कहा है। और शाजिया कहती हानी एक बात सुने, क्रीम बिल्कुल यूज करती हूँ, नाइस क्रीम आहे, क्रीम जो नालो छाए यू तो बुधायो नी। मीर मोहम्मद बिरोही भाई में सुन रहे, वालेकुम असलम कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो नाइस ए गोट। दाद मोहम्मद बिरोही मदेजी से, मीर मोहम्मद बिरोही, अशफाक अली बिरोही, सजाद अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है जी, वेलकम हो गया आपका। फलक लिखते हैं कि आपके आने से बहुत खुशी मिलती है, बट प्रोग्राम कभी कभी सुनता हूँ और शामले प्रोग्राम भी नहीं हो पाता, आप हमेशा खुश रहें, आमीन। बहुत शुक्रिया जी, कोशिश किया करें कि शामले प्रोग्राम रहा करें, ठीक है। और नूर खान हमें सुन रहे हैं, कहते टॉपिक मैं बड़ा अमीर होता, अल्लाह सच्ची बुधायो। अबू हनीफ अल बलोची लिखते हैं कि कहाँ जाकर दुआएं करूं कि मिल जाए तू, ऐसी कौन सी मन्नतें करूं कि मिल जाए तू, तेरे बगैर सब खाली खाली सा लगता है, बता ऐसा क्या करूं कि मिल जाए तू। सिंधी सॉन्ग सुनाओ, डिसा डिसा माँ वरी वरी तोखे, माँ डिसा थी गानो मुखे मिलियो तो हलाए वठूं ना, ठीक है। नूर खान लिखते मैडम तुम्हारा जो शो लाइक एंड शेयर करी छड़ियो आए, बहुत शुक्रिया। वसीम अली हमें सुन रहे, कहते टॉपिक में गरीब और अमीर दोनों होता, वो कैसे भला बताएं तो। अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ खुश आमदीद, मेलसी से हमारे प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। मोहम्मद राशिद अवान हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कहती हूँ आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है हमेशा की तरह, सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम भाई। और फहीम भाई कहते हैं डॉक्टर माई जो नालो अन्या ताई खबर ना ही पई, मैडम का पूछा उन भी चयो मुखे केड़ी खबर। बाबा हाँ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइण सां मतलब हुजे, ठीक आहे, नालन जो तव्हां छा कंदा, तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदरि कहिड़ियूं कहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे कहिड़ो कहिड़ो फ़ाइदो ॾींदी, ठीकु आहे, इहा तव्हांखे ख़बर हुजे। ओके जी, मलिक नजर हुसैन भाई हमें सुन रहे हैं, मलिक नजर हुसैन, मलिक भाई आपको वेलकम कहते हैं। और शरारती बच्चा कहते हैं आवाज तो बहुत प्यारी है पर आपकी जबान कौन सी है, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है भाई, सिंधी सिंधी आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं बताइएगा जरा, शरारती बच्चा। और चाचा कहते हैं कि आप उर्दू मीडियम से पढ़ी है या सिंधी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए क्योंकि आधा सिंधी और आधा उर्दू। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं मटियारी सी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको।

अरे भाई डीस्कन का जो फेस वॉश है ना वो आपको मिल जाएगा, आप नंबर के ऊपर रابطہ कीजिएगा, उनसे मालूमात लीजिए कि भाई साहब हमारे एरिया में डीस्कन ब्यूटी फेस वॉश कब आप अवेलेबल करा देंगे, तो वो अवेलेबल करा देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। बस आप डीस्कन का जो फेस वॉश है ना वो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, ठीक है। हाँ जी हथ में गुलाब हुयो, पर गुलाब जी जगह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुई तो मजो अची वे। निधि हमारे प्रोग्राम में है, कहती है अस्सलाम वालेकुम शोना, सॉरी फॉर लेट, मुझे लग रहा है तुम्हें आज सर दर्द है तो चाय पीना, चाय पीने से मेरा सर दर्द तो नहीं जाता। ये पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनका सर दर्द चला जाता है चाय पीने से, मुझे तो दवाइयां खानी पड़ती है तब जाकर सर दर्द जो है वो थोड़ा सा ठीक होता है। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और वासु भाई भी आ चुके हैं, हेलो वासु भाई। अच्छा शरारती बच्चा के थी, हाय माशाल्लाह बच्चों वाली हंसी, कहीं आप एआई तो नहीं, लग भी मुझे ऐसा ही रहा है कि मैं एआई हूँ। वाकई भी आजकल जो है ना एआई लोगों की जॉब्स खा रहा है, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई मैं एआई बन जाती हूँ। कम से कम मेरी जॉब तो सेफ रहेगी, समझ रहे।

दर्द दिल कहती है कि टॉपिक में अमीर होती चंदा। अच्छा चाचा लिखते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या ब्रेन को भी खूबसूरत करता है? हाँ जी बिल्कुल करता है, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और शफी मोहम्मद भाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। राजा लिखते हैं कि अमीर हो जाहां तो ही सवाल ही न पूछा हाँ, गरीब हो जाहां तो पैसा उधार बैठी जवाब दिया हाँ। डूड सही है ना जवाब? जी जी डूडी आप बताएं, कहां गायब रहते हैं आजकल इतने मसरूफ हैं। हाय अल्लाह। अब्दुल जी कैसे हमारे साथी? वालेकुम अस्सलाम। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया। किशोर भाई भी आ चुके, कहते आधा स्मार्ट आयो आया नी, स्मार्ट आयो आ नहीं तो स्मार्ट के चौदह भली करी आयो नी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो, ठीक है। आई हिते टाइम थे बाबा, न्यूज ब्रेक की जानेब जाएंगे और न्यूज ब्रेक के बाद हम ना जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आ जाते हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलिएगा। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। GFM88 नेटवर्क, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
4: कई खबर कूड़ी आए न्यूज वेबसाइट के खबर हटाने घुर्जे तमाम जल तेल जे अगन में भी लात थी नी
5: कतर जरिए सत नुकतन ते बदल मनसूबो अमेरिका के मोकलियो आए हाने ईरान के अमेरिकी जवाब जो इंतजार आए ईरानी परदेही वजीर अब्बास राची चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं कतरी सालसन सां थियल मुलाकात में ईरानी मौक़िफ़ अमेरिका ताईं पहुचाए छॾियो आहे व्हाइट हाउस जो जवाब अॼु तेहरान खे मिली वेंदो एटमी प्रोग्राम बाबति बि गुमराह कंदड़ प्रोपेगंडा कई पई वञे ईरान जे मौक़िफ़ में का बि लचक न आहे ऐं आबने अरुम्स बाबति शर्त बरक़रार आहिनि
4: केपीके में दहशतगर्दीअ खे कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में नाहे डायलॉग हणण सां कुझु बि न थींदो कम करणो पवंदो केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त पीटीआई वारा लॉन्ग मार्च जो ऐलान त कनि था पर ही सवाबी बि पार करे न सघंदा आइन ऐं कानून खे न मञींदड़नि सां ॻाल्हियूं थींदियूं
6: हथियारबंद हुआ उन्हनि रोड ते खजी जो
4: पार करे न सघंदा आइन ऐं कानून खे न मञींदड़नि सां ॻाल्हियूं थींदियूं
6: नरोबाग रोड ते खजी जो जेको आहे फड़ विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा ऐं मां उन गोलाई टन ॾियां पियो उन नरेबाग चौक खां तकरीबन 6-7 माण्हू उन टाइम ते हुते मौजूद हुआ मां उनखे गाॾी हिकु हथियारबंद खे गाॾी हिट करण जी कोशिश कई जेकी गाॾी मुंहिंजी हेठि सारनि जे फसल में लही वई बंदि थी वई ऐं बाद में उन दरियूं खोले मूंखे ॿाहिरि कढियो ऐं मुंहिंजी तलाशी वरिती कारण इहो आहे त भोतारनि जे ख़िलाफ़ लिखे थो भोतारनि जे ख़िलाफ़ छो लिखे थो लाॻीतो ही लिखंदो अचे थो भोतारनि जी सलामी न भरींदो आहे जेको उहे मास्टर माइंड उन्हनि खे फोन ते इहे ॻाल्हियूं करे रहियो
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: हार्वर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साल ऐं बीएड 2.5 साल जूं दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि जेकॾहिं तव्हांजो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स हाई स्पीड वाईफाई तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी मयारी तालीमी माहौल ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274 ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापरा कॉलोनी खैरपुर अॼु ई दाख़िला वठो पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: मालवन भारन लाइ खुश खबरी 50 सालन खां आज़मायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अव्हां खे खुशहाल बनाए हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वटि दस्तियाब आहे।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
1: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा।
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 03013992836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

रैप और मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है, और क्यों ना बताया जाए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इतने दुलारे प्रोडक्ट्स जिनके लाड उठाने को दिल करता है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो भाई जान जल्दी कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है ना, अगर आप करेंगे तो आपकी खूबसूरती में जो है ना वो चार चांद लगने वाले हैं। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल आप भी इस्तेमाल कीजिए, आप भी कीजिए, जो जो आप सुन रहे हैं ना आप सारे लोग कीजिए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज क्यों करेंगे ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बिल्कुल जी, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया, अभी भी आप लोगों को बताएंगे कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में इन हैं, अगर आप जाते हैं तो आपको आराम से मिल जाते हैं, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको जो नंबर्स प्रोग्राम में बता रही हूं ना उनके ऊपर आपने रابطہ करना है। नंबर्स के ऊपर जैसे ही आप रابطہ करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो नंबर्स के ऊपर रابطہ किया करें और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहें, ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये जनाब मेडिकेटेड फार्मूला है, कोई ऐसा वैसा प्रोडक्ट तो आपको सिद्रा बता

आएगी नहीं ना। तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब डे स्किन ब्यूटी क्रीम ये जनाब 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि जब आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो ये बजाहिर तो नाइट क्रीम है लेकिन ये आपको रिजल्ट्स जो देगी वो फेशियल वाले रिजल्ट्स देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे आप इस्तेमाल करें तो खूबसूरती के साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे, तो बिल्कुल आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें मिलकर जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम बनी है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको बहुत शानदार से रिजल्ट दे रही है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल हर स्किन के ऊपर किया जा सकता है, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, हर स्किन के ऊपर आप आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको शानदार से रिजल्ट्स मिल चुके होंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, आपके अगर घरों में शादियां हो रही हैं, आपकी अपनी शादी हो रही है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बिना तो भाई ये चीजें अधूरी हैं। आप जरा अपनी जिंदगी को मुकम्मल कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल जो है ना वो आपको बार बार लगातार इसलिए बताती हूँ ताकि आप जितनी भी सुनने वाली समाते हैं उनको पता चल सके कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए क्यों ज्यादा जरूरी है। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसका नरम और खूबसूरत सा एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खूबसूरत और खास बना देगा जनाब। आपकी स्किन साफ सुथरी हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहती है, आपकी जल्द की जो है ना वो ऐसे आपको महसूस होता है कि भाई हमारी जो जल्द है वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, ताजगी आ चुकी है, आपके चेहरे पर फ्रेशनेस का एहसास है। और ये खूबसूरती आपको मिल सकती है जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो ऐसे अकेले आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं परचेज करनी, साथ में आप डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसके बारे में अगर थोड़ी सी आप लोगों को बात बताऊं तो डी स्किन का जो फेस वॉश है इसके अंदर जनाब हाइलुरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया है, और वो इसलिए ऐड किया गया है ताकि जो आपकी स्किन है ना वो हमेशा मॉइस्चराइज रहे, डीपली क्लीन रहे, और आपके चेहरे की स्किन जो है वो हमेशा हाइड्रेट रहे। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है इसे आप 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह को लगाइए, दोपहर को लगाइए, रात को लगाइए और सो जाइए। बिल्कुल जी, आप ये तरीके का जब फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके खूबसूरती के लिए मतलब जरूरी हैं, और इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे हमारी बॉडी को खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी स्किन को भी जरूरत होती है भाई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की। तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट अगर आपको नहीं पता कि कौन से हैं तो आपको बताती हूँ मैं रोजाना कि आप डेली आकर हमारे प्रोग्राम में सुन सकें कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कितने सारे फायदे आपको मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे तो डायल करेंगे जनाब 0332738 4309। बुरी ट्रे सौ बैटरी है 73 84 309। यो नंबर आहे 03-12-50-25-907। बुढ़ी 312 50-25-970। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते जाइए। बिल्कुल जी, क्या ही शानदार सा कॉम्बिनेशन है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश का, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए अगर नींद पैसों से मिलती, हाँ जी सुनिए जरा, अगर नींद पैसों से मिलती तो आप अमीर होते या गरीब होते? मुझे जानना है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप बहुत ज्यादा नींद करते हैं या फिर आप तोली तोली सी नींद करते हैं, तोली तोली सी नींद। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, इससे ये होता है कि भाई हम बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि भाई साहब आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और अगर आपके एरिया में भी नहीं मिल रही है तो आप भी डायल कर सकते हैं ये नंबर जो अभी आपको बताए हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, फरमाइश तो ये पता नहीं किसने फरमाइश कर दी थी, तो चलिए जी गाना सुनते हैं।

बिल्कुल आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ पर हम जरा पैनल की जानिब आते हैं। पैनल पर आपके मैसेजेस जमा हो चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिला है वो मकसूद मल्हा का ही। कहते मेहरापुर से सिद्रा मुस्कान, हेलो हेलो जी हेलो। कहते वो बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें लड़की बोलती है नारी नारी नारी। ओके समझ गई। कहते हैं वो सुना दे और क्या कहते हैं जी जी। हमने शमन का गाना तो सुन लिया ना, आपने एंजॉय करा होगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है मकसूद मल्हा। वोट मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ कहते तवांजो शोवरी नाई साई सलाम तवां के वालेकुम अस्सलाम तवां के प्यारा भा। वोट गुलाब लगारी खां साबिर लगारी रिजवान लगारी वालेकुम अस्सलाम। शो नाई से प्लीज प्ले फायजा अली। ओके आई ट्राई। शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कुनैन सेहरा आपका शो सुन रहे हैं। आपकी कंपेयरिंग अच्छी है। हमें हमीद अंसारी का गाना सुना दिया। अच्छा आपने गाना भी लिख दिया है। मैं कोशिश करती हूँ ये गाना आपको सुनाएंगे। ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

0: Tomare peri.
1: Yo yo cha.
2: Tu jo halan tho mare peri, tu jo khilan tho mare peri.
1: Maine aim tukka lagaya.
2: Tu jo tarish nikahun sa, ye disan tho mare peri.
1: Baba. Kya baat hai? किसकी भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यहाँ पर बात हो रही है तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम चाला। मुझे प्यारी दिलबर दोस्त जाने सिद्रा। हाँ जी की आयो खुश आयो। और ये हमारे साथ कहते हैं हम भी आपके शो में आ गए। मेरा नाम अवेस अहमद मुगल है। अच्छा नहीं अवेस आपका नाम है। कहते अहमद मुगल का गाना सुनाए। ठीक है जी। कहते फैमिली के साथ आपका शो सुन रहा हूँ। भाओ रोहिणी में क्रीम कहाँ मिलेगी? अवेस भाई रोहिणी में क्रीम आपको हर जगह मिलेगी। बस आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, अपनी टांगों को थोड़ी सी हरकत दीजिए और जाइए करीबी जनरल स्टोर से, वहां से मालूमात लीजिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है और आपकी फैमिली को भी वेलकम। कहते हैं चाचा खालिद आपने गाना बुला ही लगाते ही जी लगाते हैं। और ये हमारे साथ अल्ताफ जानी। अल्ताफ जाग जानी चाचू कहते हैं प्ले बरकत अली वफा किथे न रहिया डेडिकेट बिस्मिल अजरा कोसो एंड यू। महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रहे कहते कुंज को सिक भरियो सलाम। कबूल हो कुंज जलाल को प्ले करें। थैंक यू ओके मैं लगाती हूँ जी। और अल्ताफ कोसो चाग जानी चाचू लिखते है की मकसूद। अच्छा दो दो चाचा आप गाने क्यूँ फरमाइश करते एक ही फरमाइश किया करे गाना डेडिकेट किया है बिस्मिल अजरा कोसो इन मी सो थैंक यू। मुझे बताए की आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके या फिर अभी तक रहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम? क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सब लोग लगाइए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल मर्द हजरात खवातीन सारे लोग ये कर रहे हैं। उनसे जरा पूछिए कि वो कितने खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो तव्हांखे रीस नथी अचे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा। ऐं सुणा सुणा थींदा हलो।

आपको क्या लगता है इस मामले में जो ये निगत कह रही है? अच्छा, ये हमारे साथ है महल आवाज से गुलाम शबीर अबड़ो। बारिश इधरा पैसा होगा तो नींद भी आएगी, वरना सोच के रात गुजर जाएगी। बाजी मुस्कान, गाना सुना दो, तुम हमसे बिछड़ जाओ, ये हक है तुम्हारा, बोलो हमारे बिन करोगे कैसे गुजारा। वाह सही, वाह, लगाते हैं ये गाना आपके लिए। फिर खासी अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला महर भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं क्या? बात है जी, ये तो बढ़िया हो गया। इरम कहते हैं आप ही खैर तो है, मुझे नहीं पता।

आज के दौर में लगता है हाँ सब कुछ है. मिथिली कहती है सब कुछ तो पैसा ही है आजकल, ओ या गाल. किशोर भाई कहते हैं दुनिया में पैसों ही तो सब कुछ आ है, ओ या गाल. दातुला कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है. डिसो डिसो डिसो.

त आहे बिल्कुल जी पैसे सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी तुम वी डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम वी सो पैसो जरूरी है न हमारे सारे चाचा खालिद को सलाम झंडो मरी खां अली हसन खास के लिए मंजूर अली खास के लिए गुन पहाड़ खास के लिए यार मोहम्मद खास के लिए ओके ओके मकसूद मला कहते सदरा सवाल तो बहुत अच्छा किया है पर मुझो वरी दिमाग कमी नथो करे सर के ऊपर बहुत जोर दिया है सोफा रख दिया है अब तो मुझे चक्कर आ रहा है इतनी आपने जरा मेहनत क्यों कर दी बताएं मुझे अल्ताफ को सर जाग जानी चाचू लिखते हैं प्लीज प्ले भाई हाजिर हाजिर लगाते हैं आपका गाना थोड़ा सबर कीजिए अच्छा टॉपिक ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर नींद पैसों से मिलती तो आप अमीर होते या गरीब होते

भाई झंडो मरिए में चाचो असो फेमस थी वो है। झंडो मरिए मानन के अलाए केड़ी चाचे सा सिक्का है। चलो झंडो मरिए में ताके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले पई। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अठो झंडो मरिए वारो। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर ता इस्तेमाल कयो पया तो मुखे लाजमी बुधाए जो ठीक है।

ओके जी, हज़ार भा कहते पैसो कुछ भी ना है, पैसो कुछ भी ना है, तो तुम पांजो पैसो जो है ना वो हज़ार भा ने सभी मानों के विरहा दियो जो चंदा पैसो पैसो सब कुछ हाला जेके यो चंदा ना सा पैसो कुछ भी ना है असा नजर में पैसो कुछ भी ना है ओए पांजो पैसो पो विरहा छन छडींदा है पान वट पैसो रखंदा छन न्यू लाई सारी प्रॉपर्टीज जो हुंदी है ये चीज जरा समझ नहीं आती और ये बात भी अक्सर वही लोग बोलते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो भाई इतना सारा पैसा है तो उनको बांट देना लोगों में आपने क्यों रखा है अपने पास और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाइए उन्हीं पैसों से खरीद करके क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको लगता होगा बहुत महंगी है हाँ। लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मुनासिब से पैसों में आपको मिल रही है तो आप जाएंगे और परचेज करके आ जाएंगे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको देगी जनाब फेशियल वाला निखार तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं मर्द हसादी खवातीन भी और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी हर स्किन के हिसाब से तैयार की गई है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और खूबसूरत होती जाए।

अच्छा डूडी कहते हैं कि पैसा एतिरा घट आहिन जो एटीएम भी ॾिसी चवे थो भाऊ दुआ कर अल्लाह अच्छा किशोर भाई कहते मेरे हाथ की चाय नहीं पीना वरना सरदर्द गायब हो जाएगा अल्लाह इतनी पावरफुल चाय था ठाईंदा आयो छा मौजिम चांडियो में सुन रहे हैं मौजिम चांडियो भाई आपको वेलकम कहते हैं जर्मन माली हमारे साथ कहते जबरदस्त प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई और राजा कहते हैं कि डूडी सॉन्ग चलाओ हाजिर डूडी गानो तुम बुधो निदड़ी कहती है कि हाँ भाई तहां तो वैसे हमेशा ही दुखियल आयो सो दुखियल मानुआ खा रे केड़ा असा केड़ी असा दवा पूछो सही है ना और दाऊद अली पी हमारे साथ है दाऊद पिताफी भाई वालेकुम अस्सलाम ठीक हूं आप बताएं कैसे हैं और मीर मोहम्मद बिरोही भाई तवां जो मोहब्बत हुआ ता प्रोग्राम के पसंद कयो पई चौथा डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो नाइस आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कई कोन यो भी बुधाए जो अच्छा शरारती बच्चा लिखते हैं कि सुनने में मजा आ रहा है सिंधी जबान को लेकिन समझ आना बहुत मुश्किल है यानी सिंधी जबान को समझना बहुत मुश्किल काम है तो बस आप सुनकर जो है ना वो मजे लीजिए और मायाली हमें सुन रही कहती है इट्स सो गुड शो थैंक यू मायाली और अबू हनीफ कहते हैं मैं इंतजार इतना करूंगा खुदा भी कहेगा ले ले ये हक है तेरा अली तो अरे नहीं भाई डी स्किन का लोशन अभी तक नहीं आया व्हाइटेज का लोशन मिलता है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल है अभी तक तो अगर सर्दियां आ रही हैं आपको लोशन की नीड है तो आप व्हाइटेज का लोशन जो है ना वो परचेज कर सकते हैं

0: भाई चाचे का शादी हम क्यों कराएंगे, चाचे का शादी तो ऑलरेडी हो चुका है ना।
1: हर कोई मिल दे, तो कोई रो दे, कोई।
0: अच्छा जैन अली कहते हैं हमारे यहाँ तवां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले, चलो असां तवां जे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल करायूं था, ठीक आ जैन अली।

अच्छा हिदायतुल्ला मुलाई के बारे में इंफॉर्मेशन हम नहीं रखते. आप ही रखिए और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी अपने पास रखिए. और यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब, जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाइए और खूबसूरत हो जाइए.

0: It's 2:30.
1: मेहराबपुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 ایں فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहुं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003335569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हाँ दा कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836

जी बोलो, हमारे बिना करो कि कैसे गुजारा, क्योंकि हम आपको बताते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम खत्म हो गई, आपको नहीं पता कि कहाँ से मिलने वाली है, तो फिर तो जाहिर बात है गुजारा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आपके घरों में शादियां होने वाली या फिर आपकी अपनी शादी हो रही है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल तो भाई साहब लाजमी करना चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए ना। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको हर जगह मिल रही है, हर जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल है। और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर भी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको जो प्रोग्रामिंग नंबर्स बताती ना, उनके ऊपर राबता करते रहिए, ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दिया जाए।

बिल्कुल जी, हम आ चुके हैं प्रोग्राम की लास्ट लिंक में। जो लोगों ने अभी अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहते हैं। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है जो जानना चाहते हैं भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज बड़ी फेमस है जनाब, कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वाले लोग जो ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। अगर आप भी खूबसूरत होना चाहते हैं, मर्द हंस चाहते हैं, खवातीन है, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अच्छा, रील्स देखकर गुजारा हो जाता है, बाकी ये सही बात है वैसे, और गुजारा नामुमकिन नहीं है, ये भी सही बात है। और अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल तो हर स्किन के ऊपर किया जा सकता है। अगर आप ये सोच कर परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, इसके ऊपर कोई भी क्रीम सूट नहीं करती है, जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो उल्टा हमारी स्किन खराब हो जाती है, तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखें। अभी तक आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाई ना, इसीलिए आपको नहीं पता कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने के बाद आपको कितने अच्छे खासे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स हैं, सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको अच्छे से रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है। ये नाइट क्रीम है, लेकिन ये आपको रिजल्ट जो देगी वो एक अच्छे फेशियल के देंगे, जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग, हर स्किन के लिए है, हर इंसान के लिए है। और इसी के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में मिलनी चाहिए, तो नंबर्स के ऊपर रابطہ जरूर किया करें। तारिक भाई हैं जिनका नंबर आप डायल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। भाई दूसरा नंबर अगर रिस्पांस ना दे तो तारिक भाई तो जरूर रिस्पांस दे देंगे, और तारिक भाई का नंबर है जनाब 03-12-50-25-907-5-5-970। ही नंबर आहे तमा डायल करे पाने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सको था। अगर यो नंबर रिस्पांस न दे या वरी बंद हुजे, तो तमा हिन नंबर ते राबतो कयो जेको आहे 03-27-38-43-09-73-73-84-9-309। ही नंबर तमा डायल करे सको था। सो डायल कयो पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराईंदा रहो।

0: ओके जी, भलो गानो जेको असा बुधंदासी नसा गडो गड तवांजा मैसेज आहेन गोठ मुंदर खान पालारी से नाशीद नाशाद नेक मोहम्मद पालारी के ते अदी पैसो मजबूरी आ जरूरी आ इस दौर में जीने के लिए वरना मौत जरूरी आ अदो लगे तो सतायल आए अदा सही था जो तवा इरम कहती है वाह वाह सिट जानी हाँ जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और साइमा मीर कहती है अस्सलाम वालेकुम वाह जी वाह मस्त आरजे का मस्त शो निगत नाज जो गानो पैसा कुछ भी ना है सिद्रा तुम भले मेरे पैसे ले जाओ प्यार मोहब्बत है सब कुछ। और रही बात डी स्किन ब्यूटी क्रीम की तो जिन्हें हम अजीज होंगे दिल वाला इंसान खुद ही लेकर देगा पैसा भी उसी के होंगे हमें नो चिंता। अरे भाई हाँ दिल वालों मानू का ना गोलूँ तुझे जो तेज डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी फिलहाल तो पान वो जो मानो मिली वो तो यो बार रखासी ठीक है। और कहती है कि थैंक्स सिद्रो जानी दोनों फीमेल सिंगर माय मोस्ट फेवरेट आज लगता है अपना शो है। और सिद्रो मस्त सॉन्ग्स आपने लगाए हैं टॉपिक गरीब और गरीब होते और प्यारी एक बात कॉपी सॉन्ग से परहेज करो चले मैं देखती हूँ वैसे कुछ कुछ अच्छे होते सारे अच्छे नहीं है
1: फसल में ओ।
0: और जी हमारे साथ गोठ मोमन तैयब थेबू का हबीबुल थेबू कहते शो तुम्हारा लाजवाब आए थैंक यू वेरी मच भा तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी करे ठीक है।

बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि तव्हां वठी सघो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि तव्हां घुरी सघो था। पंहिंजे प्यारनि खां घुरो बाबा, जे ॾिसो साइमा मीर ॿार रखी छॾियो त को ईंदो त हुनखे चवंदसि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी ॾे, पर तव्हां पाण वठो बाबा, ऐं तव्हां पंहिंजे पिणी प्यारनि खे गिफ्ट बि करे सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम। सो जेके जेके तव्हांजी ज़िंदगी में पिणी प्यारा आहिनि, उन्हनि खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम गिफ्ट कयो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु डी स्किन जो फेस वॉश बि गिफ्ट कयो। ऐं उन खां अलावा तव्हांखे जॾहिं इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे अहिड़ी ख़ूबसूरती मिलंदी जेका तव्हां कॾहिं बि हासिल न कई हूंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु तव्हांजे ख़ूबसूरती जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद आहे। सो इस्तेमालु करे ॾिसो, जीअं तव्हां बि सुहिणा थी सघो। अच्छा, सुल्तान महमूद हमारे साथ हैं। सुल्तान महमूद भाई को वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं।

कदर। अच्छा वसीम कहते हैं था गानो तो बुधाए जो हर जाए पिरी हर महफिल में मुके तूजी कमी महसूस थी यो गानो ताके 5 बजे वाले प्रोग्राम में बुधराइंदा जेके गाना रहजी वेंदा ना अजी प्रोग्राम में 5 बजे वाले प्रोग्राम बुधंदा सी ठीक आहे अच्छा दर्द दिल कहते बिल्कुल शादी वाला माहौल हो गया था हाँ गाने ऐसे लगाए थे और किशोर भाई कहते कि अगर कोई शख्स कंहिंखे तकलीफ पहुंचाए तो समझो हू बेरहम आहे हुनखे कदे मोहब्बत नथी हूंदी बिल्कुल बिल्कुल सही था चो तव्हां जंहिंजे अंदर एहसास न आहे उहो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे ॿियनि खे तकलीफ़ ॾींदो हिते नींद का अमीरी ग़रीबी से क्या तालुक अरे भई हाणे ॾिसो अगरि निंड पैसनि में मिले हा त तव्हां निंड घणी वठो मतिलबु घणा निंड कंदा आहिनि माण्हू जेके घणी घणी सफ़ा 12-12, 13-13 कलाक त उहो इलाही वठंदा न त उहो ग़रीब हुजनि जेके वरी सफ़ा थोरी निंड कंदा आहिनि त उहे मतिलबु घटि निंड वठंदा त उहे अमीर हुजनि लॉजिक समुझंदा कयो

ओके जी, दादूला कहते हैं कि उसके कहने का मतलब है कि पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं, जरा समझो। हाँ, मुझे समझ आ गई थी बात। वहीम कहते हैं कि पैसे जे करे ऐसा घर का परे बैठा आयो। ओ यह गाल थी, ओ यह गाल। और मैं तो जिंदा ही सैलरी की वजह से। हाँ भाई, सैलरी मिलती है। और अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं, अर्ज मोहम्मद गोला भाई तान यो वाला वाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे डिठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां के सफा सोनो सोनो बनाए छड़े थी। ऐं सजिद साजिद हुसैन सुमरो मारे सादे साजिद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी, नाइस हो है आपका डी स्किन लगायो पया नाइस आहे। फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना से शाहिद बबर का गाना सुनाए। ओके जी साजिद भाई, मैं देखती हूँ टाइम बच गया तो आपकी पसंद का गाना लगाते हैं, ठीक है? नहीं तो 5 बजे वाली प्रोग्राम में सुन लेंगे। पहले था और हमारे साथ है जी शू, वालेकुम अस्सलाम। ये नाम ऐसे ही आपने लिखा है, जी और शू। ओके जी, और साथ साथ शौकत अली सोलंगी भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। मुस्तफा सोलंगी फ्रॉम जमाल शाह भाई को वेलकम कहते हैं। जीशु भाई कहते हैं कि कैसी हैं आप ही, बहुत दिन के बाद आपका शो सुन रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और हनीफ बिरोही भाई भी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम हनीफ भाई। फैसल अहमदानी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम फैसल कहते हैं, असा की भी याद कयो, हाओ भा हाओ।

उसे कहो दिल मेरा रिहा करे, क्योंकि ये जब दिल कैद हो जाते हैं ना किसी की मोहब्बत में, तब बड़े मसले होते हैं। ओके जी, जरा शायर साहब फरमा रहे हैं। उम्र भर लिखते रहे फिर भी वर्क सादा रहा, उम्र भर लिखते रहे फिर भी वर्क सादा रहा, जाने क्या लफ्ज थे जो हमसे ना तहरीर हुए। जिंदगी में कुछ ऐसा साथ ऐसे भी होते हैं जो दिल में बरसों रहते हैं, मगर कभी लफ्जों तक नहीं आ पाते। हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत, किसी से शिकायत, किसी के लिए दुआ और किसी के लिए दर्द, मगर वक्त गुजरता जाता है और वो बातें दिल के किसी खामोश कोने में दफन सी रह जाते हैं। कभी खौफ रोक लेता है और कभी अन्ना, कभी हालात और कभी ये सोच कि शायद अब कहने का कोई फायदा नहीं रहा। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो महसूस होता है कि जिंदगी की सबसे अहम बातें वही थी जो कभी कह नहीं पाए, किसी को बता नहीं पाए। हमने खत लिखे, डायरियां भरी, लोगों से बातें की, मगर कुछ लफ्ज ऐसे थे जो सिर्फ दिल जानता था। शायद इसीलिए बात चेहरे भूल जाते हैं, मगर कुछ अधूरी बातें उम्र भर याद रहती हैं। कुछ जज्बात लफ्जों से नहीं, खामोशियों से पढ़े जाते हैं, और हर खामोश इंसान के अंदर एक अधूरी तहरीर होती है।

हाँ जी, ये दीवानगी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लिए है। और चाचा कहते हैं कि तुम्हारा दिल तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के प्यार में कह दे। बिल्कुल चाचा, आपने सही फरमाया। और मिर्जा के लहरी हमारे साथ कहते हाय हेलो। और इसी के साथ हम ये प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक लगाते हैं, और ये गाना होने वाला है जी फोजिया सुमरू की आवाज में।

तारिक भाई आपको रिस्पांस दे देंगे, ठीक है, आप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा। अच्छा फलक अली हमारे साथ है, फलक अली आपको भी वेलकम हो गया, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अच्छा अदो जे तो मेरे पास भी एक तारिक भाई आहे जेको तारिक रोड कराची में रहंदो आहे, जबरदस्त इंसान आहे भाभी। तारिक नाले वारा अदा जेके हुंदा आहिनि भला हूंदा आहिनि। असां तारिक भाई भी भलो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, अगरि तव्हांखे नथी ख़बर पए त बाबा असां किथां वठूं, या अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी, डी स्किन जो फेस वॉश नथो मिले, त तव्हां तारिक भाई जो नंबर मिलाए करे उन खां हाल अहिवाल वठी सघो था। ऐं आयशा मेमण बि असांजो प्रोग्राम वॾे शौक़ सां ॿुधंदी आहे, ऐं आयशा मेमण खे बि असां चऊं था भली करे आया। अच्छा मेटा ऑफिशियल हमारे साथ है, हेलो। मेटा भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं आजकल। आसिफ पमर भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे कहते हैं। अच्छा आपने शायरी भेजी है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई।

जी, अबू हनीफ आपका भी बहुत शुक्रिया. और किशोर भाई कहते हैं कि अदा टॉपिक अगर केर एक घंटो 15 या 20 हज़ार जो डे तदें भी इंसान केतरो अमीर थी दो. सही आ बाबा, तां सही आ, तां सही आ. अच्छा, उन खां अलावा हिते तव्हां खां मोकल वठण जो जेको आहे न टाइम बि थी चुको आहे, सो इजाज़त वठूं था. जिन जा गाना रहिजी विया आहिनि उहे वरी तव्हांखे 5 बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधरायूं था, ठीकु आहे. सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा रहो ऐं इलाही इलाही इलाही सुहिणा थींदा रहो, ठीकु आहे. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे ख़ूबसूरती में 4 चंड लॻाए छॾींदी. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि अञा ताईं कोन वरिती आहे त बाबा वठी अचो. और ये हमारे पास पैनल पर जाग जानी चाचू मौजूदु आहिनि, बहुत शुक्रिया आपका. और किसी का खाली मतलब नाम नहीं है, वो मैसेज मिला है तो बहुत शुक्रिया. वालेकुम सलाम, नाम लिखा करी अपना. और बस तव्हां सां मिलूं था वरी 5 बजे वारे प्रोग्राम में. सो पंहिंजो ओ एॾो सॼो ख़्यालु रखंदा. किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत, जेको गानो ऐं मैसेज वग़ैरह रहिजी वियो त बाबा माज़रत. मोकिलाणी न आहे सिन सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: अफगान सरजमीन तां थींदड़ हर हमले जो जवाब भरपूर ॾिनो वेंदो. सुध समा वारे वफाकी वज़ीर अता तरण चयो आहे त अफ़गान तालिबान रजीम खे दहशतगर्दी वारे माइंड सेट करण मां निकिरणो पवंदो. अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द जा थाक मौजूदु आहिनि. अफ़गानिस्तान जा घणा मसइला अक्सरियत पसंदीअ सोच जो नतीजो आहिनि. अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे.
4: अमेरिकी सदर ईरान जा ज़ब्त असासा बहाल करण वारी ख़बर खे रद्द करे छॾियो. डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जा ज़ब्त थियल असासा बहाल करण ऐं ईरान ते लॻियल पाबंदियूं हटाइण बाबति ईरान खे आछ नाहे कई. ख़बर कूड़ी आहे. न्यूज़ वेबसाइट खे ख़बर हलाए हटाइण घुर्जे. तमामु जल्द तेल जे अघनि में बि लाभ थींदी.
3: कतर ज़रिए सत नुक़्तनि ते ॿधल मनसूबो अमेरिका खे मोकिलियो आहे. हाणे ईरान खे अमेरिकी जवाब जो इंतज़ारु आहे. ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राची चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं कतरी सालसन सां थियल मुलाक़ात में ईरानी मौक़िफ़ अमेरिका ताईं पहुचाए छॾियो आहे. व्हाइट हाउस जो जवाबु अॼु तहरान खे मिली वेंदो. एटमी प्रोग्राम बाबति पे गुमराह कंदड़ प्रोपेगंडा कई पई वञे. ईरान जे मौक़िफ़ में का बि लचक न आहे. आबना अरुम्स बाबति शर्त बरक़रार आहिनि.
4: अरिड़हीं तरमीम नाकाम थी वई आहे. नवा इंतज़ामी यूनिट अंटर आहिनि. सिंध में निज़ाम ऐं पंजाब में वन वूमेन शो हली रहियो आहे. सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीद चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम को लाभ न ॾेई सघी आहे. नवनि इंतज़ामी यूनिट्स तरफ़ वञणो पवंदो. हुकूमती निज़ाम वारो मॉडल हाणे तब्दील थियणु घुर्जे.
3: केपी ऐं बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन सत दहशतगर्द मारिजी विया. सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि केपीअ जे बाड़ा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनल ख़्वार जा 5 दहशतगर्द मारिजी विया. बलोचिस्तान में चागीअ जे इलाइक़े नोचका में ऑपरेशन दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया. मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार हथ. सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि बलोचिस्तान ऐं केपीअ मां आख़िरी दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं कार्रवाइयूं जारी रहंदियूं.
5: ॿारहं टीह मिंटनि ते मां पहुतो आहियां नरो बाग चौक. उन चौक ते पहुतो आहियां त उते जेके हथियारबंद हुआ उन्हनि रोड ते खजी जो जेको आहे फड़ विछाए रोड ब्लॉक करे वेठा. ऐं मां उन गोलाई टन ॾियां पियो उन नरे बाग चौक खां. तक़रीबन 6-7 माण्हू उन टाइम ते उते मौजूदु हुआ. मां उनखे गाॾी हिकु हथियारबंद खे गाॾी हिट करण जी कोशिशि कई. जेकी गाॾी मुंहिंजी हेठि सारनि जे फसल में लही वई बंदि थी वई. ऐं बाद में उन्हनि दरियूं खोले मूंखे ॿाहिरि कढियो ऐं मुंहिंजी तलाशी वरिती. कारण इहो आहे त भोतारनि जे ख़िलाफ़ लिखे थो. भोतारनि जे ख़िलाफ़ छो लिखे थो? लाॻीतो ही लिखंदो अचे थो. भोतारनि जी सलामी न भरींदो आहे. जेको उहे मास्टर माइंड हो उन्हनि खे फोन ते इहे ॻाल्हियूं करे रहियो.
4: KTN न्यूज़ खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल शिकारपुर मां हथ अची वियो. SSP शिकारपुर बाज़ियाबी पुलिस जी महिनत करार ॾेई छॾी. धाड़ेल अज़ीम सियाल खे कोट शाहू थाणे जी हद शेरगढ़ पिकेट वटि छॾे फरार थी विया. अज़ीम सियाल चयो आहे त हक़ सच लिखण तां भोतारनि अगवा करायो. मास्टर माइंड लॻातार धाड़ेलनि सां राब्ते में हो. वक़्तु अचण ते नाला ज़ाहिर कंदसि. धाड़ेलनि धमकियूं ॾिनियूं आहिनि त भोतारनि ऐं संदनि सहूलियतकारनि जा नाला खयां त कुटुंब खे क़तल करे छॾींदा.
3: चक वेझो गढ़ी तेगो जे कचे वारे इलाइक़े में पुलिस ऑपरेशन मुबैना तौर ड्रोन जो गोलो किरण सबबि 3 ॼणा मारिजी विया. औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 9 ॼणा ज़ख़्मी. 2 ॼणा ॻणितीअ वारी हालति में सखर इस्पताल मुंतकिल. कोट शाहू थाणे जे हद ॻोठ इमामदीन मिसराणी में पुलिस पारां ॾोहारनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन कयो. मारिजी वियलनि में मुनीर, हसन ऐं अलीज़ा शामिल आहिनि. जॾहिं त वारसनि मूजिबि मारिजी वियल माण्हुनि कचनि वारे इलाइक़े में तिरनि जे फसल जो लाभारो करण लाइ वियल हुआ, जिते घर ते माटर गोलो करण सबबि वाकियो पेश आयो. इंसाफ कयो वञे.
4: लाड़काणी ऐं कंदकोट में फायरिंग जे वाकियनि में 2 ॼणा क़तल. इस्लाम कोट मां 1 ॼणे जो लाश हथायो आहे. लाड़काणी जे सिविल लाइन थाणे जी हद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में फिदा हुसैन बुलेटी मारजी वो कनकोट में अणजातल हथियारबंदन की फायरिंग में मोहम्मद खान मारजी वो बिन्हीं कतलन जा कारण मालूम न थे। इस्लामकोट के गेस्ट हाउस में कराची वासी पीरसन जो लाश मिलो है। इंतजामिया मूजिब मलीर वासी सैद आफ्ताब आलम रात कमरो बुक कराया हो चयाई थरकोल से कम कंदो आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: असली चीजान चारों मसालों की सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34-2000 डिसी करे खरीद कंदा। जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त। जी जान चारों मसालो ढोरे सेहतमंद। जी जान चारों मसालो। जी जान चारों मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो।
7: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज। मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे। दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें।

0: केतरिन ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणिजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वगे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-335-69।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
5: 0301-399-2836।
6: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ जीए एफएम 94।

0: नहीं तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक के सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सोमवार।

0: गुर्दे जी पथरी मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8151
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94
4: जिंजा रोज हथ खुशियूं

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: साल पार्टी जी की मां साफ़ के यहाँ पे मकामी बोतार मकामी वगैरह मंत्रालय वन मुझे थे मुझे दिखावा में उन्हें जाकर जो दूरी जा मास्टर माइंड मलवासन रक्त चंके इंक्वायरी चंके मां वो ना हुआ वहाँ कलस मुझे फिर एक आज भी जो कि दावल होने तो मास्टर माइंड उनके सोना करंता मुख्य जो को प्रेशर लेता तो इनके चोट ही बोतारन की गुलामी करे बोतारन खिलाफ लिखकर बंद करे अहिड़े किस्म जूं बंदि कयूं मुसलसल अचनि पियूं धारल बि मूंखे कार चकनि पिया जेकॾहिं तूं वधीक क़िस्म जो को स्टेटमेंट ॾींदे त तोखे बि क़तल कंदासीं तुंहिंजी सॼी फैमिली खे क़तल कंदासीं
4: KTN News खानपुर मां जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल शिकारपुर मां बाज़ियाब धाड़ेल ने अज़ीम सियाल खे कचे में छॾे फरार थी विया अज़ीम सियाल चकरा बंदि करे नापरकोट पुलिस चौकी पहुतो पुलिस धाड़ेल जे घरनि खे लॻातार ड्रोन सां निशानो बणाईंदी रही ड्रोन मां फायर थियल राकेट जा टुकड़ा लॻण सबबि अज़ीम सियाल ज़ख़्मी पिण थी पियो ड्रोन हमलनि सबबि मुगवी साफ़ी जी जान ख़तरे हेठि रही नापरकोट चौकी तां KTN News सां ॻाल्हाईंदे अज़ीम सियाल चयो त हक़ सच लिखण तां मक़ामी भोतारनि खे सगवा करायो वक़्त अचण ते संदन नाला ज़ाहिर कंदुसि भोतार ऐं संदसि मास्टर माइंड लॻातार धाड़ेल सां राब्ते में हुआ पुलिस जे ड्रोन हमलनि सबबि धाड़ेलनि खे छॾे ॾिनो धाड़ेलनि धमकियूं ॾिनियूं आहिनि त भोतारनि ऐं संदन सहूलतकारनि जा नाला खयां त कुटुंब खे नुक़सान पहुचाईंदासीं अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी खां नापरकोट पुलिस चौकी ताईं पहुचण ताईं SSP शिकारपुर ॼाण रहियो KTN News ते ख़बरूं निशर थियण बाद शिकारपुर पुलिस जाॻी पई
5: پولیس کی طرف سے جو آئی جی صاحب کے احکامات ہوم منسٹر صاحب کے احکامات ہیں اس کے مطابق یہ جو ایک مشترکہ آپریشن کیا گیا جس کو لیڈ SSP گھوٹکی نے کیا اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ یہ جو صحافی ہیں عظیم سیال صاحب وہ شکارپور میں وہ ڈاکو ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یہ نہایت ہی بہترین کامیابی ہے انشاءاللہ سندھ پولیس لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑتی رہے گی شکریہ
4: SSP شکارپور کلیم ملک چیو آج تو پولیس کے گجل آپریشن سبب عظیم سیال باضابطہ عمل میں آئی कारवाई दौरान धाड़ेल अज़ीम सियाल खे छॾे फरार थी विया पुलिस जी उहा बहितरीन कामयाबी आहे सिंध पुलिस रत जे आख़िरी फोड़े ताईं अवाम जे जान ऐं माल लाइ विढ़ंदी रहंदी

केटीएन न्यूज रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी ते आईजी सिंध जावेद आलमोडो पारां पुलिस टीम के शाबाश। जावेद आलमोडो पारां कामयाब कार्रवाई ते डीआईजी सखर ऐं डीआईजी लाड़काणो लागापियल एसएसपी जी सारा। आईजी सिंध जावेद आलमोडो चवण आहे त सहाफ़ी अज़ीम सियाल जी बाहिफ़ाज़त बाज़ियाबी पुलिस जी हिकमत अमली जो नतीजो आहे। लाड़काणे सखर जे डीआईजी तोड़े एसएसपी जी कारकर्दगी सारा जोगी आहे। पुलिस पेशवराने महाराज जो मुज़ाहिरो कंदे मुगवी सहाफ़ी खे बाज़ियाब करायो। सिंध पुलिस सहाफ़ियुनि शहरियुनि जे तहफ़ुज़ लाइ पंहिंजूं ज़िमेवारियूं अदा कंदी रहंदी। अज़ीम सियाल जे अॻुवा ख़िलाफ़ सॼे सिंध में सहाफ़ती तनज़ीमुनि पारां एहतजाजी कयो वियो। कोटकी, नौशहरो, फिरोज़, गंबटो, बावड़ो, मीरपुर, माथेलो, ठरी, मीरवा, चक, बख्शापुर ऐं भांसैदाबाद में एहतजाज कयो वियो। सखर, जरवार, खैरपुर, दोदापुर, कंब, दड़ो ऐं तलार में बि कलम धड़ियुनि एहतजाज कयो। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अतातार के टी न्यूज़ जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे अॻुवा जो नोटिस वरितो। अतातार चयो आहे साफ़ अज़ीम सियाल जे अॻुवा जी मज़म्मत कयूं था।

0: डिस्ट्रीब्यूशन में मैकेनिज्म है, वो जब रिक्वायर करेगा तो ये सारी चीजें।
1: मगर ये सुहेल अफरीदी नहीं चलेगा, ये मैं आपको कहता हूँ, अपने पार्टी के अंदर भी नहीं चलेगा, उसकी सीटशिप भी नहीं चलेगी, इसकी कोई अभी उसको बचा नहीं सकेगा। आप तैयार रहे, जेल के अंदर होंगे, पुलिस सलाखों के अंदर होंगे।
2: केपी में वडो वजीर तब्दील थींदो या इमरजेंसी लगंदी, वफाक हुकूमत जे मुशावरत आखिरी मोरले में दाखिल। कानून वारे वजीर सेनेटर आजम नजीर ताड़ चयो आहे त केपी में इमरजेंसी लगण घुर्जे ऐं लगंदी बि। आयन में घुर्ब ज़रूरतूं पूरियूं हूंदियूं, सभु कुझु थींदो। इमरजेंसी बाबति आयन वाज़े आहे। वफाकी वज़ीर अमीर मकान चयो आहे त केपी में गवर्नर राज जूं घुर्जूं पूरियूं आहिनि, केपी में कंहिं बि वक़्तु कुझु बि थी सघे थो। गवर्नर राज जो ऑप्शन हले या न, पर वॾो वज़ीर सुहेल आफरीदी न हलंदो।
3: डेट के बरक्स कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई भी अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई इस बात से मुझे डराता है कि वो यहां पर गवर्नर राज लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा, जो मुझे अपने नजरिए से हटाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस गुस्सी की। जो मेरा मौका फेरे दिन का जो इमरान खान साहब का है, जो इमरान खान साहब का नजरिया है, वो आज भी है, वो इसके बाद भी होगा। अपनी पॉलिसी बदलो।

0: पीटीआई के पाकिस्तान एफआईसीआर मां का एक जी चूंड करनी पवंदी। सोहेल आफरीदी इंतज़ामी तौर नाकाम थियण बाद सियासी तौर बि नाकाम थी वियो आहे। सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर तातार चयो आहे त सूबे अंदर तबाही थी चुकी आहे। वफ़ाक़ के पी खे अरबे रुपया ॾिना आहिनि, ॿुधायो वञे त पैसा काॾे विया आहिनि। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो त के पी हुकूमत ॿुधाए त संदन अफ़गानिस्तान बाबति रवियो नरम छो आहे। सरहद पार थींदड़ हमलनि में 70% अफ़गानी मुलवस आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बनजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लागापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk, वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापरा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: पैंटी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कार करदगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए होंडा जे कॉग्निशन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड राब्ते जे लाए 03-1803
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03-00-33-8569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03-01-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: सोनी अज त डाढी खुश थी लगे।
1: हाँ साईं, गाल भी एड़ी आहे।
0: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
1: चाचे, जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पंहिंजे ढोरन खे जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। हीअ चारो ढोरन जो हाज़मो दुरुस्त करे थो, ढोर सेहतमंद थियन था, गोश्त सां गॾो गॾु खीर भी वधे थो।
0: वाह सोनी वाह, वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं, रेडीअ ते था ॿुधाइन, ॿुध ऐं अची वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी

0: जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खसूसी रियायतें मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाइपर राप्ती 7590
1: मेहराबपुर जी अवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छडायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोस पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराबपुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर में सहूलत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 ऑटोस थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 फेस मोहम्मद पहियार 03003118956 A1 ऑटोस मेहराबपुर नालो आहे एतमाद जो खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर 03003385569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बे डरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी है मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013808743
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94

0: It's 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: KTN News खानपुर मार जो रिपोर्ट अजीम सियाल शिकारपुर मा बाजियाब धाड़े अजीम सियाल के कोट शाहू थाने जे हद शेरगढ़ पिकट वट छड़े फरार थी वया अजीम सियाल कच्चे में मुख्तलिफ रस्तन खां थिंदो नापर कोट चौकी पोतो ऑपरेशन दौरान पुलिस धाड़ेल जे घरन के लगातार ड्रोन सा निशानो बणाईंदी रही ड्रोन में फायर थियल रॉकेट जहा टुकड़ा लगन सब अजीम सियाल जख्मी पिण थी पो ड्रोन हमलन सब मुगवी साफी की जान खतरे हेठ रही नापर कोट चौकी KTN न्यूज से गालाइंदे अजीम सियाल हक सच लिखण त मकामी बोतारन के अगवा कयो वक्त अचण से संदन नाला जाहिर कंदुस बोतार संदन मास्टर माइंड लगातार धाड़ेल से राबते में हुआ पुलिस के ड्रोन हमलन सब धाड़ेल के छड़े दिनों धाड़ेल धमकी दिनों आयन तो बोतारन सदन सहूलतकार नाला खया तो खेस कुटुंब के कतुल कर छींदी अजीम सियाल के बाजाबी का नापरकोट पुलिस चौकी पोचण ताई SSP शिकारपुर अणजान रो बाजाबी बाबत KTN न्यूज से खबर नशर थे बाद शिकारपुर पुलिस जागी पई

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुझी एड्रेस बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
5: सौ छियासी
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़। सिंध की आवाज़। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।
1: छाके वन्यो छो बेली थिए बियन जो वठ कंजक करीम जी जग जो वाली जो सोखो दोसो जंजो इश्क अल्हासी सुहारी सिंध जे मलूक मिट्टी ते रहंदड़ तमाम मौजिज बुधंदड़न के लाखीणे लतीफ जी बोली मेहरान जी छोली ऐं मिठड़ी अमड़ जे लोली जहड़ा सोहणा सलाम ऐं GFM रेडियो नेटवर्क जे सजी टीम जा कुर्ब कबूल पवनि।

पंहिंजा कहिड़ा हा। खुशबान जी दुआ है सदाई तारन में चंडू हुजो, खीर में खंडु हुजो, मेवन में अंबु हुजो, ऐं कॾहिं पंहिंजी मुर्क मेरी न थिए। सदाई अवां जी लुड़कन जो डुकार ऐं मुर्कन जो सुकार हुजे। शाल अवां खे कोसो वा न लगे, शाल अवां डुखियो ॾींहुं न ॾिसो। जुग जुग जीओ, मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलन जीअं टिड़ंदा रहो। मौज़ सामईन, ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो GFM मातली, GFM सखर, GFM मीरप्रकाश, GFM लाड़कणो, GFM मोरो, GFM मेहरापुर, GFM मटियारी, GFM सकरण।

सणी सिंध जी सरजमीन ते शाम जे इन पहर में गोठन वाहिणन वस्तियन बस्तियन आबाद शहरन में ही आवाज GFM 88 रेडियो नेटवर्क जो है। अवां जी खिदमत में शो पेश कजे थो सिंधड़िए जी।

सिंधड़ी जी शाम में मोहब्बतुन भरियो यूनिस बकारी जो सलाम। जी मोज सामाइन, अवां जो वक्त किए पे गुजरे? अवां बिल्कुल ठीक ठाक हशाश बशाश आयो? असंगे उम्मीद है ता खुशबाश हुंदो। दोस्तों, जेकरे तमा खुश आयो तो तमा की सजी दुनिया खुश लगंदी, और जेकरे तमा परेशान हुंदो तो पोए तमा की पूरी दुनिया परेशान लगंदी। सो अवां ते छड़ियल है तो तमा पंजो पान के खुश रखी सको था या परेशान। कदे कदे असी पराई परेशानी में भी घणो परेशान थी वेंदा आहियूं, ऐं कदे कदे असी पंहिंजे खुशीअ में भी मापजी नाहियूं सघंदा। बहरहाल इंसान इंसान आहे, पंहिंजे हिसाब सां जीए थो, हले थो, घुमे थो, फिरे थो, जेतिरो थी सघे थो ॿियनि जे ख़ुशियुनि लाइ जीओ।

जी जनाब, तव्हां मैसेज करे सघो था। तरीक़ेकार आहे, लिखणो आहे MTI स्पेस, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो, पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-188 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो। मां ॿुधो पियो GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे ऐं GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे स्टूडियो जी पेशकश यकीन आहे।

वेलकम बैक मजीद सामईन अवां बुधो पिया जीए एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के अवां जे पंज शो अवां बुधो पिया सिंधड़ीए जी शाम आए आई अवां जो आरजी अवां सां मुखातिब आहे यूनिस बकारी मोहब्बतुन जी महफिल जारी हो सारी सो मौज समय जर अव शामिल थियण चाहियो था तो मैसेज हाणे ही मोकिलियो लिखो MTI स्पेस दई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888-881 ते असांखे मैसेज ॾेई मोकिले सघो था ऐं मैसेज जीअं ई तव्हांजो पहुचंदो त ज़रूर शामिल कंदासीं ऐं हा GFM 88 रेडियो नेटवर्क खे ध्यान सां प्यार सां ऐं पंहिंजाइप सां ॿुधण लाइ तव्हांजूं मोहबतूं ऐं अव्हांजो थोरो थर जी वारीअ खां वॾो मैसेज पहुची चुको आहे सजण सांगीअ जी वांढ खां असांखे ॿुधे थो गुलाब गुल अव्हांजो तमामु घणी महिरबानी गुलाब गुल थैंक यू भलीकार चवंदासीं मोहबतूं अव्हांजूं ऐं असांखे ज्वाइन कयो आहे शहर झोल खां ॻोठ गुलाम हुसैन जलालाणी खां नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी अव्हांजूं तमामु घणियूं मोहबतूं भलीकार महबूब नाज़ जलालाणी मुख़्तियार नाज़ जलालाणी आरज़ू असलम जलालाणी जो मैसेज पहुतो अव्हां लिखियो अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम तमामु तमामु घणियूं महिरबानियूं ॻोठ मुरीद मंगरियो रोहड़ी सखर खां नज़ीर अहमद मोहसिन अली ऐं मुदसर अली मंगरियो ॿुधनि पिया अव्हांजूं तमामु घणियूं महिरबानियूं ऐं मोहबतूं अव्हां खे चवंदासीं भलीकार ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ॻोठ पुनू ख़ान पंवर खां रोस्तम अली पंवर लिखे थो त ख़ूबसूरत प्रोग्राम मिठा माण्हू तमामु घणियूं महिरबानियूं भलीकार ऐं ॻोठ हाजी सुल्तान लुंड खां प्यार अली लुंड ॿुधे पियो अव्हां जूं तमामु घणियूं मोहबतूं झलूरी खां ख़ालिक लाशारी अव्हांजो मैसेज पहुतो अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं थैंक यू वॾा वॾ ॻोठ हाजी ग़ुलाम ख़ासकेली झंडो मरी खां असांखे ज्वाइन कयो क़ुर्बान अली ख़ासकेली अव्हां जूं तमामु घणियूं महिरबानियूं क़ुर्बान वेलकम चवंदासीं ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क तमाम शामिल थियण चाहियो था त हाणे ई मैसेज कयो लिखी वठो जी जी बिल्कुल शुरू में लिखो MTI MTI लिखण खां पोइ स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो जी हा पंहिंजो नालो लिखण खां पोइ 888-881 ते मैसेज ॾियारे मोकिलिजो

मैसेज पर तो यूनुस भाई क्या हाल है, सलाम कबूल हो। 78 मोरी खा राजा हमीर चंदी वे मैसेज मोकले हो। आई किशोर तांजो तमाम घणे मेहरबानी हो। हीरा लाल अवां सा गद सवाई लाल बुधे पियो, तमाम घणे मोहब्बत हो। भलीकार साईं

0: यह है GFM 88 रेडियो नेटवर्क।
1: कमा पारो
0: शो है सुधरिए जी श्याम अवां जे नाम इन ट्रैक के बुधंदे कमर्शियल ब्रेक ना वधंदासी जेखा पो वापस अची वरी पवां जा मैसेज शामिल कंदासी तेस तई जल्दी जल्दी टाइप करे वठो MTI स्पेस वही पेंजे गोठ एं शहर जो नालो लिखो पेंजे नालो लिखो 888-188-81 असां जो नंबर है उनते मैसेज डायरे मोकलजो।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि। ते लाए मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
6: मलूक मानन के सिकबरियो सलाम ए शाम जे इन पहर में अवां जे लए दुआगू बायो ए जेकर अवां चाहो ता तवा इन शो जो हिस्सो बनजो त बिना देर जे एमटीआई लिखो स्पेस दियो पंजे गोठ ए शहर जो नालो लिखी पंजे नालो लिखो 888-881 से नंबर है जे मैसेज दारे मोकल जो अवां जे मैसेजेस यकीनन शामिल कंदा सी। एफएम 88 रेडियो नेटवर्क के ध्यान से गौर से प्यार से पंजाइप से बुधंदा आयो असा जे लाई हा वडी गाल। लुटको मोरी खान अब्दुरहमान लगारी बुधे पियो, मिठा खान लगारी अवां जी तमाम घणी मेहरबानी, वडा वड़ तालिब हुसैन लगारी अवां सा गजी बुधे पियो, किरोड़े कुर्ब तवां जा खुश हो आबाद हो। साॻी माग खां मोहम्मद साले लगारी ॿुधे पियो, लालबख्श लगारी ऐं बिलावल लगारी ऐं उसामा लगारी अव्हां जूं महिरबानी। कुंडरी खां चवन कुमार कोहली, डॉक्टर अनीता चौहान, संगीता पारस जो मैसेज पहुतो, अव्हां जूं तमाम घणियूं महिरबानी। बाबो वेरो थरपारकर खां असांखे ॿुधनि था, दिलीप कुमार मेघवाड़, नोवल राय, दानिश कुमार मेघवाड़, सूरज गुल ऐं शंकर लाल मेघवाड़, अवां जूं महिरबानी भलीकार। ॻोठ झपियो खां मोहम्मद सिद्दीक पाढ़ो ऐं रोशन अली पाढ़ो ॿुधनि था, अवां जूं मोहबतूं ऐं अव्हां खे चवंदासीं भलीकार।

झुड़बी का वफा गुलाम रहीम बलोच बुधे थो अवां जो तमाम घणी महिरबानी ऐं बिलावल बलोच बुधे पियो भलीकार असगर ऐं नंढड़ो शहज़ाद अहमद बलोच भलीकार।

टोक्यावा जेवेझो गोठ आहे सुमरो खान लाशारी उतां खां असांखे ज्वाइन कयो आहे गुलाम हैदर लाशारी अवां जी महिरबानी गुलाम मुर्तज़ा लाशारी अवां जी महिरबानी अवां खे चवंदासीं भलीकार वेलकम चवंदासीं वॾा वॾ अवां जा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो ऐं गुलाम मुस्तफ़ा लाशारी अवां जूं मोहबतूं गुलाम सरवर लाशारी ऐं थैंक यू गुलाम यासीन लाशारी भलीकार

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Sona, sirf zevar nahi, isliye bank ka compliant gold financing. जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की बैंक इस्लाम से आज ही 11264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज

वेलकम बैक मज़े सामाइन GFM 88 रेडियो नेटवर्क कमांसन मुखातिब है सिंधड़ी शाम अवज नाव सिंधड़ी जी शाम जमे हनन पलन में ता सके बुध पया है कि वक्त GFM सखर GFM लाड़कानू GFM मेर प्रकाश GFM बोरो GFM मेरापुर GFM सकरण GFM मटियारी GFM माथली जगह जगह मैसेजिस तहां कंदा रहंदा त लिख जो MTI स्पेस दई पंजे गोठ शहर जो नालो लिखो पंजे नालो लिखो एंटीपलेट 188 ते असा के हाणे ही मैसेज त्यारे मोकलियो दिसंदा सी त असा गड केयर होंदो जेक बाबत खां शौकत अली जखराणी बुधे पे भलीकार रहमत अली जखराणी तमें लिखो तो प्रोग्राम पसंद आए तमाम घणी मेहरबानी बिल्कुल प्रोग्राम तक पसंद आए तो असि तवाजा थोरायता आयो तमाम घणी मेहरबानी

मूंखे सोहराब निज़ामाणी खां मोहबती मंगण निज़ामाणी साहब जो मैसेज पहुतो आहे। अव्हां जो तमामु घणी महिरबानी ऐं नंढड़ो अहसान। निज़ामाणी तव्हां सां गॾिजी ॿुधे पियो, तव्हां चयो त प्रोग्राम लाइ जवाब आहे, तमामु घणी महिरबानी, कुर्बा वहां जा। ही आहे GAFM 88 रेडियो।

0: मज़े सामाइन अवां जेकर असांजो आवाज़ कनायो पिया त बाक़ी असां वटि बचिया आहिनि 7 मिंट मैसेज शामिल करण जा, तव्हां मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी मज़ समीन अमालिको एम टी आई स्पेस दई पंजे गोट शहर जो नालो लिखो पंजे नालो 888-188-81 मैसेज मोकले छो गुलाम सर्वर असांगे बुधे पियो अंसारी शहर जेको आहे उहो अवां लिखियो पंहिंजो गोठ। ओके जनाब थैंक यू जी लोको शहर लिखियल आहे। ओके रोहड़ी शरीफ ऐं तमामु घणी महिरबानी वॾा वॾा जा साईं ख़ुशि हुजो आबाद हुजो। थैंक यू वेरी मच तव्हां असांखे ॿुधो पिया असीं तव्हांखे वेलकम चवंदासीं भलीकार चवंदासीं। ऐं हा मौज़ीज़ दोस्तो तमामु जेकॾहिं शामिल थियणु चाहियो था जल्दी जल्दी सां लिखो एम टी आई स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी पंहिंजो नालो लिखो ऐं 88-81 ते मैसेज मोकिले छॾियो। ओके जनाब असांखे जीअं त मूं पहिरीं बि ज़िक्र कयो त गुलाम सरवर अंसारी साहिब मैसेज पहुतो ऐं पहिरियों दफ़ो पहुतो आहे त तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानी ख़ुशी थी तव्हां असांखे ॿुधो पिया थैंक यू वॾा वॾ ऐं वेलकम चवंदासीं तव्हांखे जो तव्हां अॼोके शो जो हिसो बणिजी चुका आहियो। ऐं अव्हांजा ॿ मैसेज अगरि पहुता आहिनि तमामु घणियूं मोहबतूं ऐं अव्हांखे बि चवंदासीं भली कार ख़ुशि हुजो।

जी मज़ साइन यकीन आखिरी ट्रैक शामिल कंदासीं मैसेजन वारे हिन कंपोनेंट जो यानी जेको पहिरियों कलाक जो हिसो हूंदो आहे उनमें असां मैसेज शामिल कंदा आहियूं त उन में असां कोशिशि कयूं पिया त हिकिड़ो ट्रैक तव्हांखे ॿुधायूं उन खां पोइ न्यूज़ ब्रेक ते हलंदासीं जितां खां न्यूज़ ब्रेक हूंदो कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वापसि अची अवां जूं कॉलूं शामिल कंदासीं अवां किथे कहिड़े ॻोठ वाहिणनि वस्तियुनि खां असांखे ॿुधो पिया असीं अवां खे चवंदासीं भली कार तमामु घणी महिरबानी वेलकम।

त पोइ हलूं था ज़बरदस्त ट्रैक ॿुधण। तेसि ताईं तव्हां नोट करे वठो, लिखणो आहे तव्हांखे MTI स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखणो। पंहिंजो नालो 888-881 ते मैसेज मोकिलिजो। ज़बरदस्त ट्रैक आहे, इंजॉय कजो। ऐं हिन ट्रैक खे ॿुधंदे ॿुधंदे न्यूज़ ब्रेक ताईं पहुचंदासीं, जितां वापसि अची तव्हांजो कॉल्स शामिल कंदासीं।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पारां लंडन स्टॉक जो दौरो ओपन मार्केट की तकरीब में शिरकत तकरीब में खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मईशत के मजबूत करण लाइ घणो कम कयो आहे। मईशत जे माइक्रो इस्तेकाम बाद मैक्रो इस्तेकाम ते कम करे रहिया आहियूं।

0: पीटीआई जे लांग मार्च ख़िलाफ़ पार्टीअ अंदरां ई आवाज़ उथण शुरू थी विया। तहरीक इंसाफ़ जे मर्कज़ी तर्जुमान शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी खे लांग मार्च अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी करण जो मशवरो ॾेई छॾियो। शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खे लिखियल ख़त में चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु इशूज़ खे जवाज़ बणाईंदे के पी में एमरजेंसी लागू करणु चाहे थी। रियासत सां टकराउ बदिरां ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कयो वञे। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त पीटीआई जी लांग मार्च जो फ़ैसिलो बरक़रार आहे, के पी असेंबली खे टोड़ण जो को बि इरादो नाहे। सुहेल आफ़रीदी खे नाहल क़रार नथो ॾेई सघिजे, मुतबादिल ते बि मुशावरत नाहे थी।
1: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं बढ़के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की। अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
0: पीटीआई में मार्च करण जी हिम्मत ही ना है। 4 अक्टूबर ते भी लॉन्ग मार्च न थींदो, मार्च थियणो हुजे हा त 27 सितंबर ते ही थी वञे हा। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त केपी में दहशतगर्दी खे कंट्रोल करण पीटीआई जे वस में ना है। डायलॉग हणण सां कुझु न थींदो, कुझु कम करणो पवंदो। पाकिस्तान जी अमन वारी ख़्वाहिश खे कमज़ोरी न समझो वञे। अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। सुद समाव वारो वज़ीर अताउल्ला तरड़ चयो आहे त अफ़गान तालिबान रजीम खे दहशतगर्दी वारी माइंड सेट मां निकिरणो पवंदो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जा थाक मौजूदु आहिनि। अफ़गानिस्तान जा घणा मसला अस्करियत पसंदाणी सोच जो नतीजो आहिनि। अफ़गान अवाम खे पंहिंजे मुस्तक़बिल बाबति फ़ैसिलो करण जो हक़ मिलणु घुर्जे। कतर ज़रिए 7 नुक़्तनि ते ॿधल मनसूबो अमरीका खे मोकिलियो आहे। हाणे ईरान खे अमरीकी जवाब जो इंतज़ारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं कतरी सालिस सां थियल मुलाक़ात में ईरानी मौक़िफ़ अमरीका ताईं पहुचाए छॾियो आहे। व्हाइट हाउस जो जवाब अॼु तेहरान खे मिली वेंदो। एटमी प्रोग्राम बाबति बि गुमराह कंदड़ प्रोपेगेंडा कई पई वञे। ईरान जे मौक़िफ़ में का बि लचक नाहे आई। आपना हुर्मुज़ बाबति शर्त बरक़रार आहिनि। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि पुलिस सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जे गॾियल मनसूबे बाबति इजलास। नाणे ऐं रथाबंदी वारनि खातनि खे मनसूबे जी टेक्निकी ऐं मालियाती जांच जल्द मुकमल करण जी हिदायत। मुराद अली शाह चयो त मुस्तक़बिल जे चैलेंजेस खे मुंहुं ॾियण लाइ पुलिस खे जदीद टेक्नोलॉजी सां जोड़ियो वञे। अरिड़हीं तरमीम नाकाम थी वई आहे। नवां इंतज़ामी यूनिट 68 आहिनि सिंध में। मुंडो निज़ाम ऐं पंजाब में वन वूमेन शो हली रहियो आहे। सिंध असेंबली में अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी चयो आहे त अरिड़हीं तरमीम को लाभ न ॾेई सघी आहे, नवनि इंतज़ामी यूनिट्स तरफ़ वञणो पवंदो। हुकूमती निज़ाम वारो मॉडल हाणे तब्दील थियणु घुर्जे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां कराची में IIT चंद्रीगढ़ रोड ते घरू वज़ारत जी आफ़िस जो दौरो। ख़िदमत मर्कज़ जो मास्टर प्लान बि चयो त ग्रैंड ख़िदमत मर्कज़ में घरू वज़ारत हथियारनि मुख़्तलिफ़ कयूं वेंदियूं। केपी ऐं बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द मारदरियनि मूजिबि केपी जी बाड़ा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनतुल ख़ारिज जा 5 दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान में चाघी जे इलाइक़े नोकचा में ऑपरेशन दौरान 2 दहशतगर्द मारिजी विया।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में BEd 1.5 साल ऐं BEd 2.5 साल जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख़्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ BEd डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग केरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। ख़ासि ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो। ओ मेरे हमसे।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर

0: दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो चाक जे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
0: ना दा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
1: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
0: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस बुदा
2: ऑफिस जी मेरा पर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید آئے تمہاں سب خیر ہیں، خیریت سے ہوں. میں آواں جو میزبان احسان علی سیال. اواں سب بدھی رہے ہو جی ایف ایم 94 جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت جی گال. जी तो दोस्तों, दुनिया की सब का वही दौलत न सोना है न वरी चांदी, पर सेहत ऐं तंदुरुस्ती हुंदी आहे. इंसान बीमार थे तो बाकी सब नेमतूं आहिनि. जॾहिं तंदुरुस्ती हुजे थी तॾहिं ज़िंदगी जो हर लम्हो खूबसूरत ऐं बावफ़ा लॻंदो आहे. प्रोग्राम सेहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि. अया असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था. असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-91-8151. डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि. संदन, जोड़न, गोॾनि जो सूर, कुन रग जो सूर, कन, गलो, नज़लो, निछू, मथे जो सूर, अध मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघि, टीबी, मैदे जो सूर, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कजो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पुशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि. सभु खां पहिरियों त असां डॉक्टर साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवंदासीं. डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: डॉक्टर साहब कीअं आहियो? तबियत सां ठीकु आहे
1: जी, साईं अलाह ताला जा करोड़े
0: आहिनि. डॉक्टर साहब अॼु कहिड़ो मौज़ू बात ॼाण ॾींदा? सर
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन रब पाक जूं जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो. असांजे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि तव्हांखे ख़बर आहे त रोज़ाना इन टाइम ते नशर थींदो आहे ऐं हज़ारे सामाइन ताईं असांजो आवाज़ु पहुचंदो आहे ऐं हज़ारे सामाइन असांजे इन प्रोग्राम जो इंतज़ारु कंदा आहिनि. असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक, तव्हांखे ख़बर आहे त हफ़्ते जा 6 ॾींहं मुंहिंजे शहर मेहरापुर में मौजूदु हूंदी आहे. क्लिनिक जी एड्रेस वधण पोटरा पंप जे बिल्कुलु साम्हूं कोचड़ी रोड ते. टाइमिंग सुबुह जो 11 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं. हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं, आचर जो ॾींहुं, सूमर जो ॾींहुं, अंगारो क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं अरबा ऐं ख़मीस जो ॾींहुं. इन में स्पेशली 3 ॾींहं असांजा बि आहे, जुमे जो ॾींहुं, छंछर, आचर.

व्यूज़ वठी अवां ताईं पहुचाइनि। व्यूज़ वठी पहुचाइण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे त हिकु त असां त इनकरेज थींदा ई आहियूं, लेकिन अव्हां खे बि हिकिड़ी अवेयरनेस ॾियणी हूंदी आहे त मायूस अव्हां न थींदो। अव्हां खे जेकॾहिं अहिड़ी का तकलीफ़ कंहिं बि दोस्त भाउ खे पहिरीं ॻाल्हि न थिए, जेकॾहिं थी वञे त होम्योपैथिक में अव्हां ॾिठो त हुनजी ट्रीटमेंट मौजूदु आहे। दोस्त पाण जेको आहे सो अव्हां खे व्यूज़ ॿुधाए वियो, मेतलो भाउ हुयो ऐं उन जो परे परे ताईं असांजो को हुन सां तालुक़ु न आहे न वरी सुञाणूं। उन जी ट्रीटमेंट कईसीं, अलाह ताला जी महिरबानी सां हुनखे फ़र्क़ु पियो ऐं हुन खां व्यूज़ जेको आहे सो असां रिकॉर्ड कयासीं सिर्फ़ु अव्हां ताईं इन जे लाइ त जेकॾहिं कंहिंखे बि इहा तकलीफ़ थिए त जेको आहे सो हू असां ताईं ॿुधाए सघनि था। वॾी महिरबानी।

0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मोहन साहबु। डॉक्टर साहबु, तव्हां हिकु बहितरीन माशाल्लाह ॼाण ॾिनी ऐं पेशंट हुयो जेको तव्हांखे बसि जेको ॿुधायो वियो सर, जेको ज़ाहिरु हुनखे फ़ाइदो पियो आहे, उहो पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड करायो वियो आहे त ॿिया बि उन खां फ़ाइदो वठनि जीअं त।
1: जी सर, सही ॻाल्हि
0: आहे। सर बिल्कुलु, इहा ई हिकु हमदर्दी हूंदी आहे सर जी। ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851। डॉक्टर साहब, हर वा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 11 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटा पेट्रोल पंप कुटड़ी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं डॉक्टर साहब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: अई अदी, अज तो दादी खुश पे नजर अची।
3: छो न खुश थे अदी, जदे खा मुझे मुड़स ढोरन के सखर वालन जो चारो मसालो खरायो आहे, त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे, ए हाणे पैसा भी बीणा था अचन। ही दिस सोनियो चोणियो
2: तमा ब वनी चवा उनके त ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए।
4: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो।
5: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स आई जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी आई चमकदार सिर्फ बिन दीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म आई दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: कमर्शियल ब्रेक बाद। कमर्शियल ब्रेक बाद एक दफो बीहर मां सभी बुधंदड़ के खुश आमदीद चूं था। प्रोग्राम है सेहत की गाल असाजे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमून साहब। असाजे प्रोग्राम में लाइव कॉल जरिए शामिल थी सको था। असाजे लाइव कॉल जो नंबर है 0301-9196-851 0301-9196-851। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ बीमारियों जहा माहिर डॉक्टर हैं जिनमें गुर्दे पिते मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कंदा हैं। संदन जोड़न गोडन जो सूर कुनरक जो सूर नक कन गलो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र की कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहा मर्ज फालिज खंग टीबी मैदे जो सूर मैदे जी अल्सर तिली जो वधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरणियों बारन में कथ जो न वधन औरतों में मर्दन जे पोशीदा बीमारियों जो कामयाब इलाज कंदा हैं। प्रोग्राम में एक पेरी कॉल जी तरफ हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम साईं नादर अली सियाल होटल मेरापुर का बाबा
0: जी दा छा पुछन ता ना डॉक्टर साहब का
1: हत जो को सड़ी पे माशाल्लाह तो जो बेहतर आए डॉक्टर साहब असन के दवा दे सी तेल वगैरह
0: जी जी
1: आंदे एकड़ी कन में जो को आते सजे मोजे कन जो ढकड़ी साफ रे टाइम बंद थी वने
0: जी जी
1: ये डॉक्टर को पुछन दा
0: साईं। हां ठीक है डॉक्टर साहब आके बताए तो रेडियो बदो सर पहिरियां पेशेंट पहिरियां शायदि ॾेखारे वियो आहे दवा वरिती आहे हुनखे फीडबैक ॾिनो हुन सर त माना फ़ाइदो पियो आहे।
2: होटल त सियाल होटल त लाइव कॉल प्रोग्राम जे दौरान लाइव कॉल कई त हुनजो हथ जेको आहे सो सड़ी पियो आहे त हींअर छा कजे फर्स्ट एड तौर ते त मां हुनखे ॿुधायो त पचाइण वारो जेको तेल हूंदो आहे उहो तव्हां जेको आहे सो हथ खे लॻायो तव्हांजो हथ जेको आहे सो इनशाला सही थींदो आहे। हुन दोस्त उहो अमल उन वक़्तु कयो ऐं अलहमदिल्ला इहो फीडबैक ॿुधंदड़नि ताईं पहुचायो त अलाह जी महिरबानी सां जेको असां कुदरती ऐं हिकिड़ो ॾस ॾींदा आहियूं त उनजे दौरान हुन उहो ई कयो उनखे कंहिं डॉक्टर ॾे उन वक़्तु वञण जी ज़रूरत न पई का बाज़ारू शइ वठी अची हणण जी ज़रूरत न पई ऐं अलाह जी महिरबानी सां हुनखे शिफ़ा मिली वई। या हुनजी महिरबानी दोस्त जी हुन कॉल करे जेको आहे सो ॿुधायो ऐं ॿियो दोस्त हींअर मशवरो कयो वरितो आहे त कन जे जेको आहे सो यानी ॿुधण जो मसइलो हुन सां आहे त मां दोस्त खे मशवरो ॾींदुसि हिकु त ज़ैतून जो तेल जेको आहे सो बिल्कुलु कन जे पापड़ी जी या जेके कन जे पोयां उनखे लॻाए सघनि था ऐं बादाम मिसरी ऐं सौंफ अदद पाउ वठी करे सफ़ूफ़ करे चमची सुबुह शाम खाइनि इनशाला उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु अची वेंदो आहे। वरना उनजी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में आहे दोस्त खे चवंदासीं त इहे अमल करे ॾिसनि जेकॾहिं फ़र्क़ु पइजी वञे त ठीकु आहे वरना पोइ रूबरू ॾेखारे सघनि था। वरी महिरबानी हिकु दफ़ो ॿीहर उन दोस्त जी जंहिं असांजे ॿुधंदड़नि ताईं ऐं असांखे बि इनकरेज करण जे लाइ हुन जेको आहे सो पंहिंजो फीडबैक ॾिनो वॾी महिरबानी।
0: प्रोग्राम आहे सेहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमून साहबु ऐं अवां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-9196-851 0301-9196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 11 का शाम 5 वगे ताई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा हैं। नोट डॉक्टर साहब जी क्लिनिक अंगारे दिन बंद हुंदी आए इन में हफ्ते जा 3 दिन जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुल फ्री हुंदी आए बाकी दवा मरीज के स्टोर ता वठनी हुंदी आए।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाय फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो

0: 91-96-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।
1: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड डेढ़ साला ऐं बीएड अढ़ाई साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बहितरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे। तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाईफाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक़्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk। वधीक ॼाण लाइ 0304-282-7274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी, ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं, वापड़ा कॉलोनी, खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण पहिरियों कदम वधायो।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मजर स्कूल सिस्टम। 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर। 0301-386-5453।
2: मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 ऑटोस, पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग, मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 ऑटोस, थरी रोड, मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रिक्शा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 0302-3295-894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 0300-311-8956। A1 ऑटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
0: मेहरान आयरन स्टोर, हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
0: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तयाब आई
5: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: रबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601001
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड रंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
8: 03013992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
10: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
11: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
12: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे दाग धब्बे झुर्रियां और कील महा से फौरन कम करे इस्तेमाल का आसान तरीका रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम मिल्क राइज ब्यूटी सोप मिल्क राइज एक्नी क्रीम हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03003105109 03003105109

और कीमहा से फौरन कम करें। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस पीऊं दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कीमहा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109। हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कीमहा से फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइस ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइस एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स, मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000-3105109, 03000-3105109।

जी दोस्तों, उम्मीद तमाम बिल्कुल खैर खैरियत ठीक ठाक पहले बचड़न सां गॾु शादो आबाद हूंदो। ऐं असां गॾो गॾु ॿुधी रहिया हूंदो जी एफ एम 94 मेहराबपुर मिल्क राइस शो। मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट ठाहिण वारनि जी दावा आहे त ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिल जीत ले। ऐं इन्हनि जो चवणु आहे त फ़क़ति 3 ॾींहनि जे इस्तेमाल में अव्हां पंहिंजे चेहरे ते वाज़े बदिलाउ ॾिसंदव। त पोइ मां सम्झां थो इन्हनि जी दावा खे प्रूव करण लाइ 3 ॾींहं त घटि में घटि माण्हू इस्तेमालु करे सघे थो। ऐं काफ़ी सारा दोस्त करे रहिया आहिनि, उन्हनि जो रिस्पॉन्स बि पॉज़िटिव अची रहियो आहे। ऐं बाक़ी जिन हिन महिल ताईं परचेज़ न कई आहे त कंपनीअ जी प्रोडक्ट मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप, मिल्क राइस एक्नी क्रीम, इन्हनि मां का बि बल्कि ॿ त मैंडेटरी आहिनि। जेकॾहिं एक्नी नाहे कंहिंखे दाणा न आहिनि त पोइ उहो क्रीम ऐं सोप जो इस्तेमालु ज़बरदस्त तरीक़े सां करे सघे थो।

जी दोस्तों, मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स असाजे मैरापुर के तमाम सुठे जनरल स्टोर से अवेलेबल है, जैम जहाँ खुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैजान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुगल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर, अल करम जनरल स्टोर मैरापुर।

ऐं खां अलावा जेकॾहिं प्रोडक्ट जी अवेलेबिलिटी अवां पंहिंजे शहर में वेझे कंहिं जनरल स्टोर ते कराइण चाहियो था त उन लाइ अव्हांखे असांजो हेल्पलाइन नंबर डायल करणो पवंदो। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300 यानी 0300 310 510 9।

ऐं इन खां अलावा जेकॾहिं अव्हां पंहिंजो को बि प्यार भरियो पैगाम या क्रीम जे हवाले सां या असां सां ॻाल्हि ॿोल करण जे हवाले सां असां सां ॻाल्हाइणु चाहियो था, त पोइ उन लाइ अव्हांखे असांजो लाइव कॉलिंग नंबर डायल करणो पवंदो ऐं असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0300 93 19 6067।

अच्छा हूअं त होॾि चङी ॻाल्हि न आहे, ज़िद बहस चङो ॻाल्हि न आहे, पर हर ॻाल्हि जो हर सुठे जो हिकिड़ो नेगेटिव पहलू बि हूंदो आहे। ज़िद जंहिंखे चवंदा आहियूं, ज़िद यानी कि उर्दू में अगरि हम कयूं उसे खे मुतज़ाद, त पोइ अॼु हिकिड़ो नंढिड़ो ॿाराणो सुवालु पुछा कंदासीं प्रोग्राम में रौनक करण लाइ थोरी, ऐं सभिनी जी पार्टिसिपेशन रहे, फ़क़ति पंहिंजी फ़रमाइश जो गीत ऐं जेको आहे त दोस्तनि जा नाव शामिलु कंदा आहियूं। अॼु ॻाल्हि ॿोल थोरी इन ते बि कंदासीं त ज़िद जीअं ॾींहं जो राति मिठे जो कौड़ो, अहिड़े तरीक़े सां मुंहिंजो सुवालु आहे त शींहं जो ज़िद छा थींदो। जी दोस्तो, अॼु असांजो सुवालु आहे प्रोग्राम में त शींहं जो ज़िद उलट छा थींदो। आहे नंढिड़ो सिंपल पर इंट्रेस्टिंग ऐं फनी बि आहे, त ॼाण बि आहे, मालूमात बि आहे, ऐं थोरो भुल भुलैया बि आहे। त पोइ ॾिसूं था राइट आंसर केर थो बिहे। असांखे राइट आंसर हिन सवाल जो जवाबु ॾियण लाइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03-9093-6067। ऐं जेसि ताईं अव्हांजे असांखे कॉल मौसूल थिए, रिस्पॉन्स मिले अव्हांजो, असां जेको आहे त तेसि ताईं अव्हांजे आॾो साइण आब्दा परवीन जो इंतिहाई ख़ूबसूरत ट्रैक प्ले कंदासीं। अचो त गॾिजी हीउ ट्रैक इंजॉय कयूं।

0: जी दोस्तों, सॉन्ग ते वञण खां अॻु में असां हिकिड़ो इंट्रेस्टिंग ऐं दिलचस्प मतिलबु इंट्रेस्टिंग दिलचस्प हिकिड़ी ॻाल्हि आहे इंट्रेस्टिंग दिलचस्प अव्हां खां सुवाल पुछियोसीं। सुवाल तमामु बराणो ऐं नंढड़ो बि आहे त सुवाल तमामु थोरो पैचीदा ऐं अणाओ बि आहे त शींहं जो ज़िद उलट छा थींदो? जी कॉलिंग जो सिलसिलो स्टार्ट थी चुको आहे। कॉल अटेंड कंदासीं प्रोग्राम में, असांखे ख़बर पवे त शींहं जो ज़िद छा आहे ऐं प्रोडक्ट जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल पिणु कई वेंदी। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां? जी अदा, हलो, दुआऊं अलाए असां। नालो हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाइजो पंहिंजो।
1: राजू मारवाड़ी
0: मेहरापुर खां। मेहरापुर खां राजू मारवाड़ी, खुश आयो। मौजूं दुआऊं अलाह जा एहसान। प्रोग्राम कॾहिं खां ॿुधो पिया राजू?
1: प्रोग्राम इलाही ॾींहं थिया आहिनि ॿुधूं था पिया।
0: त पोइ इहा बि ॼाण हूंदी त प्रोग्राम कहिड़े मुतालिक़ आहे, छाजे बारे में आहे, कंहिंजो स्पॉन्सर्ड आहे? असांजी प्रोडक्ट आहिनि मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप ऐं मिल्क राइस एक्नी क्रीम दाणनि दाग धबनि लाइ। राजू पोइ कीअं इस्तेमालु कयो पिया असांजी प्रोडक्ट? वठो ख़ुशी जनरल स्टोर मेहरापुर आहे, फैज़ान जनरल स्टोर मेहरापुर आहे, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मेहरापुर, कोरी जनरल स्टोर मेहरापुर, जावेद जनरल स्टोर मेहरापुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहरापुर ते पिण दस्तियाब आहे असांजी प्रोडक्ट। जहिड़े तव्हां वठो ठीकु आहे, दा वरी सुभाणे अवां जी कॉल जो इंतज़ार बि रहंदो, अवां वठी करे असांखे फीडबैक बि ॾींदो। जी सुणा, ॿियो ख़ैर? बिल्कुलु ए वन। असां अॼु हिकु सवालु पुछा कयोसीं, सोचियोसीं त तव्हां खां थोरो ॿी जेका मालूमात वठी वञे, खिल भोग बि थोरो रौनक बि थी वञे, फरमाइश बि ॿुधंदासीं, तव्हांजे दोस्तनि जा नाव बि शामिलु कंदासीं। असां सवाल जो जवाबु ॾियो त ज़िद हूंदा आहिनि न, जीअं अछे जो कारो, ॾींहं जो राति, मिठे जो कौड़ो, अहिड़े तरीक़े सां शींहं जो ज़िद छा थींदो?
1: अच्छा
0: जी ॿुधायो, हुन असां पुछूं था, जेको राइट आंसर ॾींदो आख़िर में असां ॿुधाईंदासीं। तव्हां आंसर ॾींदा हलो, असां आख़िर में ॿुधाईंदासीं राइट आंसर कहिड़ो आहे। छा कंदो? मैसेज बि शामिल कंदासीं, पर हींअर लाइव कॉल ते हुयो, तव्हां धुको ई हणो आहे। धुको न हणंदो तव्हां ॿुधायो त फ़ाइदो छा? पढ़ियल बि न आहियो? हलो ठीकु आहे, छा चवणु चाहींदो को पंहिंजो प्यारे जो? जी नाला शामिल कयो।
1: प्यारो मारवाड़ी।
0: प्यारो मारवाड़ी
1: जी,
0: जी प्रेम बालम जी,
1: मुझे
0: भाई जी, प्रेम बालम
1: जी,
0: मुझे तरफा भी अवां जी सजी संगत के भा के

0: चाचा साईं खे, गणेश खे ऐं प्रेम खे, बालम खे, सभिनी खे सलाम। वॾी महिरबानी, कुर्ब लख लाइक, लव यू। जी, असां प्रोग्राम में हिकिड़ी ॿी कॉल शामिल कंदासीं। ॾिसूं त केरु थो ॿुधाए त शींहं जो ज़िद छा आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, छा हाल आहे?
0: ए वन दुआऊं अलाह एहसान, अवां ॿुधायो।
1: खैर खैरियत सर।
0: केरु पिया ॻाल्हायो?
1: मोहम्मद इब्राहिम ख़ास कली सर।
0: मोहम्मद इब्राहिम ख़ास कली, वेलकम भलीकार, ख़ुश आमद दीद।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम वेलकम वेलकम। कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो?
1: अलाह ताईं जी महिरबानी, करम नवाज़ी।
0: किथां? मैरापुर खां ई ॻाल्हायो पिया
1: सर। असांजा ॻोठ आहे सेरी, पीरो सण सां।
0: किथे ॻोठ
1: आहे? सेरी सर, सेरी।
0: फेरी?
1: फेरी साईं, ठरमीरो आहे।
0: बिल्कुलु प्यारो इलाइक़ो आहे, तमामु ज़बरदस्त। तव्हां कॉल कंदा रहंदा असांजे प्रोग्राम में? जी जी, बिल्कुलु बिल्कुलु। पर हाणे सभिनी जा ॻोठ वरी कुझु जा यादि रहंदा आहिनि, कुझु जा न। लख लाइक, लख लाइक। अॼु प्रोडक्ट जे हवाले सां त लाज़मी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु हिकिड़ो सवाल बि रखियो आहे। सवाल खां अॻु में वरी बि साॻी ॻाल्हि, त प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया, वरिती अथव? असांखे बि उमेदु आहे तव्हां में। ठीकु आहे, मुंहिंजा हा। असां सवाल ॾाढो ॿाराणो, नंढड़ो ऐं दिलचस्प, आसान बि थोरो अणाओ, उलझाईंदड़, विछड़ाईंदड़ बि पुछियो आहे, त जहिड़े तरीक़े सां ॾींहं जो ज़िद राति थींदी ऐं अछे जो ज़िद कारो थींदो, मिठे जो कौड़ो थींदो, शींहं जो ज़िद छा थींदो?
1: शींहं जो ज़िद
0: जी
1: उलट जी, शींहं जो ज़िद गिदड़ सर।
0: शींहं जो गिदड़ थींदो, पक
1: सर? पक असां त पंहिंजे तरफ़ हटंदासीं।
0: ठीकु आहे, मां इहो जवाबु नोट करे छॾियो। आख़िर में असां राइट आंसर जेको बि हूंदो उहो अनाउंस कंदासीं। प्रोग्राम खे ॿुधायो, इंजॉय कयो सभिनी जे जवाबनि खे, त दोस्त कहिड़ा कहिड़ा जवाब ॾियनि पिया। अच्छा, ॿियो छा चवणु चाहींदो
1: सर? बस असांजे तरफ़ खां जेके बि रेडियो एफएम ॿुधनि पिया मेरापुर, सॼे खे दिलि सां सलाम पेश कयूं था।
0: जी
1: ऐं असांजो नंढड़ो आहे हिकिड़ो गुलाम हुसैन ख़ासि कली
0: जी,
1: अली रज़ा ख़ासि कली, गुलाम फारूक ख़ासि कली, निनल ख़ासि कली
0: जी, इन्हनि खे सभिनी संगत खे सलाम।
1: वालेकुम सलाम सर।
0: कुर्ब कुर्ब लख लाइक, थैंक यू।
1: थैंक यू सर,
0: वेरी महिरबानी। हा, अॼु ही ॿ कॉलूं अटेंड थी चुकियूं आहिनि, टी कॉल अची रही आहे, को फरमाइश कोन करे रहियो आहे कोई दोस्त। ठीकु आहे, अटेंड कयूं था। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं, किथां खां? सद्दाम हुसैन हालाणी खां। हैलो, आवाज़ कटिजे पियो। सद्दाम हुसैन हालाणी खां? सद्दाम चौहान हालाणी खां। वेलकम भलीकार प्यारा, कहिड़ा हाल
1: आहिनि?
0: वंदाऊं अवां ॿाहिरनि जूं।
1: जी
0: जी, मां चौहान आहियां। कॾहिं खां प्रोग्राम ॿुधो पिया? एतिरी रश त कोन हूंदी आहे असां हिन प्रोग्राम में, पर ठीकु आहे, हा अॼु कॉल कोन पई लॻे, अॼु लॻी वई।
1: असल में साईं मसरू ॿुधाईंदी आहे न, ॿिया ट्राए कंदा रहंदा आहिनि इन जे करे।
0: ठीकु ठीकु, कॾहिं खां प्रोग्राम ॿुधो पिया?
1: ॿ
0: टे हफ़्ता थी विया आहिनि, त पोइ इहा त ॼाण हूंदी कहिड़े मुतालिक़ असांजो प्रोग्राम आहे, स्पेशल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम
1: आहे।
0: पोइ चौहान बि आयो ऐं डेफिनेटली जेको आहे त असां बि चौहान आहियूं, त पोइ ॻाल्हि त असांजी सम्झी विया हूंदव, मञींदव। त प्रोडक्ट इस्तेमालु कंपनी जी ज़बरदस्त दावा आहे त टिनि ॾींहंनि में रिज़ल्ट ॾिए पई, फ़क़ति तव्हां लाइ न आहे, सॼे घर लाइ आहे। अधियूं भेनरियूं मारियूं असांजो इस्तेमालु करे सघनि थियूं, त पोइ ट्राए कंदो क्रीम या वठणु चाहींदो?
1: सही
0: सही, लाजवाब लाजवाब लाजवाब
1: सर एक बार तो सर
0: हुक्म हुक्म
1: साईं तवा यो सिंधी चवण आयो या सराय की चवण साईं
0: सिंधी सुना सिंधी
1: सिंधी साईं
0: जी साईं सिंधी
1: हां अखर में नहीं असन घा चवण ना असन की बोली आवरी सराय की साईं
0: जी जी सागिया सागिया
1: हां साईं
0: जी जी जी सागिया
1: तवा भी वही चवण आयो साईं
0: जी साईं सिंधी चवण सागिया
1: साईं साईं मैं खैर साईं
0: दों दों अल्लाह एहसान
1: सजी
0: संगत के सलाम मुझे तरफा
1: वाले
0: वाले वाले। अच्छा तहां असा अजो की गुजारे जो जवाब तो कोन नो डाडी सिंपल है सोली भी आ है
1: हां भाई वो दुआ इने जो भाई जितन भी भाई आ पर बुजदिल सही रहंदा
0: बुजदिल भी सही रहंदो गिदड़ भी सही रहंदो ठीक आ असा नोट क्यों था आखिर में प्रोग्राम जे में राइट आंसर बुझो ठीक है बा
1: वाली मेहरबानी
0: लव यू लख लाइक कुर्बानी।

0: जी दोस्तों, फरमाइश बिन हेड फाइनली थी असांखे असां सां गॾु हिकिड़ो कॉलर आहे, कॉल अटेंड कंदासीं प्रोग्राम में। कॉल ड्रॉप थी वई अनफॉर्चुनेटली, अगेन बी कॉल शामिल कंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो साईं, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, केर प्यारा, किथां खां?
1: साईं
0: गुलाम फारूक राजपर ॻोठ मेरापुर में ई आहे। किथे आहे आसे पासे में? राजपर असांजो हिकिड़ो सफ़ा पहिरीं प्यारो आहे, सिंध जो सुरीलो आर्टिस्ट बि आहे, सदाम राजपर, सुञाणियुसि? सदाम खे न सुञाणियो? अच्छा, पर उहो सदाम जेको आहे न, सिंध जो नाले वारो फनकार आहे। प्रोग्राम खे महीनो थियण वारो आहे, असां कंपनी जी जेका दावा आहे न, राइस मिल्क जेके ठाहिण वारा आहिनि, मिल्क राइस जेका प्रोडक्ट ठाहिण वारा आहिनि, उन्हनि जो चवण सां टिनि ॾींहनि में रिज़ल्ट ईंदी आहे, त पोइ उन्हनि जी दावा खे एक्सेप्ट करे तव्हां इस्तेमालु त करे ॾिसो न भाउ।
1: ऐं
0: अॼोको इहो नंढड़ो सवालु आहे, शींहं जो ज़िद छा थींदो? शींहं जो बकरी अच्छा ठीकु आहे, को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो? सलामत हुजनि, इहे अव्हां हिननि जो ज़िक्र कंदा रहंदव। ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, वॾी महिरबानी, कुर्ब, ओके, थैंक यू।

0: जी दोस्तों, अॼु अव्हां जी कॉल जो सिलसिलो कुझु वधीक ई अचे पियो ज़बरदस्त, लेकिन जेको आहे त कंपनी जी दावा खे जेको आहे त अव्हां जेको आहे मान ॾियो, उन्हनि जी दावा आहे त 4 ॾींहनि में जेको आहे त रंग बि साफ़ु कंदी ऐं चहिरे ते ग्लो बि आणींदी। चवनि था त ख़ूबसूरती जो नज़र आहे भरोसा जो दिलि जीत ले। मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइस ब्यूटी सोप ऐं मिल्क राइस एक्नी क्रीम। असां सां गॾु लाइन ते कॉलर मौजूदु आहिनि, कॉल शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। हैलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां? रिज़वान ख़ासि कली साहब, गुड ज़मीराबाद खां वेलकम, भली कार, ख़ुश आमदीद पहिरां, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? मोहबतूं लख लाइक कुर्ब अवां अक्सर कॉल कंदा रहंदव प्रोग्राम में? पोइ मां सभिनी खां साॻियो हिकिड़ो सवाल पुछा कंदो आहियां त कंपनी अवां लाइ ज़बरदस्त शो बि रखियो आहे, कंपनी दावा बि करे थी त असांजी प्रोडक्ट 4 ॾींहनि में सोप त थींदो ई थींदो रहंदो आहे न मुंहिंजा भाउ, कुझु दोस्त मूं वांगुरु क्रीम जेकॾहिं घटि इस्तेमालु कंदा त साबुण त कंदा ई कंदा आहिनि न। छा चवणु चाहींदो अॼोके? अच्छा, पहिरियों त अॼोकी गुज़ार जे हवाले सां सवली सिंपल आहे, शींहं जो ज़िद बुज़दिल थी सघे थो, ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, अवां को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो? वाह वाह, लाजवाब, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बिल्कुल, थैंक यू, वॾी महिरबानी प्यारा, कुर्ब, लव यू, लख लाइक, थैंक यू, थैंक यू। जी दोस्तो, हिकिड़ी कॉल बि शामिल कयूं, उन खां पोइ अव्हां जी फरमाइश ॾांहुं वधंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम, केर साईं, किथां खां? वालेकुम अस्सलाम, केर प्यारा, किथां खां? रियाज साईं, वेलकम, भली कार, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो
1: साईं? नौकर ताबेदार साईं, शींहं जो ज़िद आहे गिदड़।
0: शींहं जो ज़िद गिदड़, ॿियो कुझु को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो? को
1: मुंहिंजो हिकिड़ो पुट ज़ेनेदर आहे,
0: सलामत हुजे,
1: रियाज अहमद शेख साईं,
0: जी
1: माशाल्लाह।
0: जी, अव्हांजे इन्हनि सभिनी महबूबनि खे मुंहिंजे तरफ़ां अस्सलामु अलैकुम, वॾी महिरबानी साईं, कुर्ब, लव यू, लख लाइक, थैंक यू। जी दोस्तो, बाक़ी कॉल्स असां अटेंड कंदासीं हिन ख़ूबसूरत ट्रैक खां पोइ। ट्रैक आहे शमर अली मीराली जी ख़ूबसूरत आवाज़ में, का सारत लहबी आहे।

जी दोस्तों, खैरपुर मां भी मिली वेंदी ऐं अव्हां जे भर पासे वारे शहर इलाइक़े तर जनरल स्टोर तां बि असांजी प्रोडक्ट मिलंदी। असांजी प्रोडक्ट में मिल्क राइस ब्यूटी क्रीम ऐं मिल्क राइस ब्यूटी सोप, हुन सां गॾु एक्नी क्रीम पिणु शामिल आहे। जेकॾहिं कंहिंखे कंहिं स्टोर तां या कंहिं ओड़े पाड़े मां कोन थी मिले त उहो असांजो हेल्पलाइन नंबर नोट करे वठे। असांजो हेल्पलाइन नंबर आहे 0300 310 510 9। इन ते कॉल करे ज़फ़र इक़बाल साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदो। ऐं ज़फ़र इक़बाल साहब उते अवेलेबल कराए छॾींदो। ज़फ़र इक़बाल साहब तमामु महिनती हार्ड वर्कर ऐं तमामु लवली ऐं प्यारो माण्हू आहे। सो उहा प्रोडक्ट अव्हां जे हर तर में इलाइक़े में अव्हां लाइ रखाए थो। बसि अव्हां जूं मोहबतूं, मान, प्यारु खपे ऐं प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदो त पोइ ई असांखे फीडबैक जे बारे में ॿुधाईंदो। सो कंपनी जी दावा आहे, मिल्क राइस ठाहींदड़नि जी दावा आहे त मिल्क राइस टिनि ॾींहनि में अव्हांजे चेहरे ते ग्लो आणींदी आहे। पोइ छो न इस्तेमालु कजे, ख़ूबसूरती जो नज़र आहे, भरोसा जो दिलि जीत ले।

जी दोस्तो असांखे लाइव प्रोग्राम में कॉल करण लाइ असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 0-300-9-1996-607 इन ते कॉल करे अवां असां सां ॻाल्हि ॿोल करे सघो था प्रोग्राम जे हवाले सां फीडबैक सां गॾोगॾु प्रोडक्ट जे हवाले सां पिण फीडबैक ॾेई सघो था उन जे लाइ अञा वधीक ॼाण हासिल करे सघो था त किथां मिलंदी किथां न मिलंदी ऐं किथां मिलंदी त यादि आयो त मेहराबपुर जी शाही बाज़ार जे तमामु वॾनि जनरल स्टोर्स ते मिल्क राइस ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि जंहिंमें जा ख़ुशी जनरल स्टोर मेहराबपुर फैज़ान जनरल स्टोर मेहराबपुर कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मेहराबपुर हफीज़ जनरल स्टोर मेहराबपुर कोरी जनरल स्टोर मेहराबपुर जावेद जनरल स्टोर मेहराबपुर ऐं अलकरम जनरल स्टोर मेहराबपुर ते पिण दस्तियाबु आहे।

जी जानी कमाल तो करी पर नेटवर्क असा के डाडो डिस्टर्ब तो पे करे सो शामिल वरी भी कोशिश कंदा से तो कॉल कई वने अस्सलामुअलैकुम माधरत खान कॉल शामिल कौन पे थी सगे सो वरी भी ट्राई कभी

हाँ, इंतहाई दुखी दिल सां इहो चवणो थो पए त कॉल शामिल करण में शायदि कोई एरर अची रहियो आहे नेटवर्क जो। वरी बि ट्राए कबी, अञा 11 मिंट आहिनि असां वटि, ॻाल्हि ॿोल बि करे वठूं था थोरी। त पोइ चवणु इहो पियो चाहे से त ज़िद फ़क़त जेको आहे न, हिकिड़ी मेमरी ताईं, यादगिरी ताईं, या कंहिंजो कहिड़ो आहे इंफॉर्मेशन ताईं बहितर रहंदो आहे, बहितर लॻंदो आहे ॼाण ताईं। बाक़ी ज़िद कंहिंसां होॾि प्यार में मुहबत में चङी न आहे। उहो ज़िद ॿियो आहे, ही ज़िद ॿियो आहे, पर असीं अवां सां मिज़ाज मिलाईंदे अवां सां ॻाल्हि ॿोल करण जी कोशिशि कयूं पिया। ऐं प्रोग्राम बि ॿुधंदा रहो, प्रोडक्ट बि इस्तेमालु कंदा रहो प्यारा माण्हू। प्यारी प्रोडक्ट अवेलेबल आहे ख़ुशी जनरल स्टोर मैरापुर, फैज़ान जनरल स्टोर मैरापुर, कामरान मुग़ल जनरल स्टोर मैरापुर, हफीज़ जनरल स्टोर मैरापुर, कोरी जनरल स्टोर मैरापुर, जावेद जनरल स्टोर मैरापुर, ऐं अलकरम जनरल स्टोर मैरापुर। इन खां अलावा जेकॾहिं जेके दोस्त चई रहिया आहिनि त असां फलाणे हंधि नथी मिले, फलाणे हंधि नथी मिले, वंस अगेन वरी ॿुधाईंदो हलां, जिन दोस्तनि हींअर ट्यून कयो आहे जी एफ एम 94 मैरापुर, त हुननि खे ॿुधाईंदो हलां त हेल्पलाइन नंबर, यानी की अव्हांखे ईअं आसान ॿोलीअ में सम्झायां त कंपनी जे ऑनर जो, सीईओ जो नंबर अव्हांखे शेयर करे रहिया आहियूं, जंहिं ते कॉल करे अव्हां प्रोडक्ट खे अवेलेबल कराए सघो था पंहिंजे शहर में। प्रोडक्ट सीईओ यानी की कंपनी जो ऑनर हेल्पलाइन जो नंबर आहे 0300-310-510-9। ऐं इन खां अलावा असांजो कॉलिंग नंबर तव्हांखे यादि ई आहे, पर अनफॉर्चुनेटली अॼु कुझु कॉलिंग शामिलु करण में डिफ़िकल्टीज़ थी रहियूं आहिनि, सो इन करे असां अॼु कॉल्स अव्हांजो कुझु घटि कयूं आहिनि शामिलु। अगेन असां जॾहिं वेझो इन खे आणियूं था पिया मोबाइल खे, त पोइ थोरो एरर काफ़ी सारो वधी थो पियो वञे।

जी दोस्तों कॉल्स भी काफ़ी शामिल थी हूं प्रोग्राम में, पर अञा हिकड़ी उहा चस रहिजी वई, अञा हिकड़ी तिश्नगी रहिजी वई जंहिंखे पूरो थियणु घुरिजे आहे। पर ठीकु, नेक्स्ट टाइम सुभाणे वरी शामिल कंदासीं खोड़ सारियूं कॉलूं ऐं ॻाल्हियूं। हींअर ताईं जिन दोस्तनि जूं महबूबनि जूं कॉलूं आहियूं उन्हनि खां हिकु अधु असां सवाल बि पुछा कयोसीं, उन खां अलावा प्रोडक्ट जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। मूंखे उमेदु आहे अव्हां यकीन प्रोडक्ट इस्तेमालु करे रहिया आहियो, ऐं जिन दोस्तनि दावा कई आहे त असां प्रोडक्ट लाज़मी वठंदासीं। उहे सुभाणे असांखे फीडबैक ॾींदा कॉल वसीले, टैक्स्ट मैसेज वसीले, त प्रोडक्ट जो छा रिज़ल्ट आहे, या असां सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ पंहिंजनि प्यारनि ताईं प्यार जो पैगाम पहुचाइण लाइ बि कॉल करे सघूं था, पंहिंजी पसंदि जो को गीत ॿुधण लाइ बि कॉल करे सघूं था। इन खां अलावा दोस्तनि जा नाम शामिल करे सघूं था, असां सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं था। मूंखे बेहदि ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं मुंहिंजी अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे। दोस्तो वक़्तु वेझो अची वियो आहे, 8 मिंट फ़क़ति अॼोके प्रोग्राम जी पुॼाणी में बचिया आहिनि। सो सभ खां पहिरियों त आउं बेहदि थो रहंदो आहियां अव्हांजे मुहबत जो, मान जो, ऐं असांजी प्रोडक्ट खे रिस्पॉन्स ॾियण जो। अञा बि जेकॾहिं मूंखे कॉल जॾहिं ज़फ़र इक़बाल साहिब जी ईंदी त बिल्कुलु मैरापुर वारनि ऐं भरपासन वारनि मैरापुर जे जिते असांजी नशरियात ॿुधी वञे थी, जितां असांखे फ़ोन्स कॉल्स आयूं आहिनि, ऐं जिन दोस्तनि अॼु फ़ोन कॉल्स कयूं आहिनि, त सुभाणे उन्हनि जी फ़ोन कॉल जॾहिं अचे त ज़फ़र इक़बाल साहिब जी बि अचे त बिल्कुलु बाबा इहे सभई दोस्त पहुता, ऐं जेको आहे त प्यार जी सेल्फी बि कढियूं मूंसां, ऐं अव्हां जा सलाम बि ॾिनऊं, ऐं जेको आहे त प्रोडक्ट परचेस कयूं, ऐं बाद में असां कचहरियूं जुड़िया रहंदासीं इनशाला। की सियारो बि ईंदो, थधि बि ईंदी, रौनक बि थींदी, चांहि जे कप बि हूंदो, सिप बि हूंदी, अव्हां सां मुहबत जूं प्यार भरियूं कचहरियूं बि हूंदियूं, ऐं अव्हां जूं कॉलूं बिल्कुलु बेहदि मूंखे वणंदियूं आहिनि भरपूर। ऐं असांजो हिकिड़ो ॿियो प्रोग्राम हूंदो आहे, बल्कि जी एफ एम जा जेके बि जेतिरा बि प्रोग्राम हूंदा आहिनि अव्हां सभई इंजॉय करे रहिया हूंदा। हिकु अधु चकर मुंहिंजो पंहिंजो जेको आहे त इतफ़ाक़ थियो ट्यून कैम, जॾहिं मां लिंक ते बि ॿुधी सघो था GAFM.net ते अव्हां वञी करे जेको आहे त जिते जिते रेडियो अवेलेबल न आहे, या जंहिं जंहिं दोस्त खे अव्हां ॿुधाइणु चाहियो था प्रोग्राम, उन ॾांहुं उहा लिंक उमाणे सघो था, गूगल करे सघो था जीमेल ते, उते गूगल ते GAFM.net इहो लिखंदो त लाइव प्रोग्राम जा अची वेंदा, असांजा 28 स्टेशन अची वेंदा, कहिड़े स्टेशन ते कहिड़ो प्रोग्राम हली रहियो आहे, या कहिड़ो स्टेशन हिन वक़्तु सभिनी सां मर्ज लॻो पियो आहे, कनेक्ट थियो पियो आहे। सो रातो को देरि सां जेको प्रोग्राम थींदो आहे उहे लॻभॻि सभिनी स्टेशन तां कनेक्ट हूंदो आहे, उन में ॾाढियूं अव्हां जी साॻी संगत जूं कॉल्स बि हूंदियूं आहिनि, ॾाढो बेहदि ख़ुशी थींदी आहे। माण्हू गुज़ारे जो रिप्लाई उनजो सवाल जो सिंपल जो ॾींदो हलां, जिन दोस्तनि रिप्लाई ॾिनो त शींहं जो ज़िद गिदड़ आहे, बिल्कुलु एग्ज़ेक्टली गिदड़ ई हूंदो शींहं जो ज़िद, छाकाणि त शींहं जो मन मिसाल आहे बहादुर, त जिन दोस्तनि बहादुर मझां उन्हनि बुज़दिल ॾियणु चाहियो त लफ़्ज़ असां बहादुर जो ज़िद कोन पुछियोसीं, त बहादुर जो ज़िद सिधो सऊं बुज़दिल थींदो। पर जॾहिं शींहं जो नाम अचे त पोइ शींहं माना जानवर आहे, जानवरनि मझां ब्रेव ऐं बहादुर जानवर शींहं आहे, त पोइ जानवरनि मझां ई हिकिड़ो बुज़दिल जानवर बि आहे जेको अक्सर राति जो निकिरंदो आहे, कूकू कंदो आहे ऐं लिकी वेंदो आहे, ऐं माण्हू उन खां ॾिदा हूंदा पर हू माण्हुनि खां ॾिदो आहे ऐं अक्सर नज़र बि न ईंदो आहे, रंग बि अहिड़ो अथसि ऐं लिकी वेंदो आहे, सो खॾणी पई रहंदो आहे, ॾींहं जो त बिल्कुलु बि कोन निकिरंदो आहे। सो इन करे उनखे बुज़दिल सां भेटा ॾिनी वेंदी आहे, शींहं खे बहादुर सां भेटा ॾिनी वेंदी आहे। सो शींहं जो ज़िद गिदड़ थींदो। बाक़ी अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, इन सां गॾु मूं नाचीज़ आबिद चौहान खे पंहिंजे मेज़बान खे इजाज़त ॾींदा ऐं अव्हां इंजॉय कंदा हीअ आख़िरी ख़ूबसूरत प्यार भरो ट्रेक। वरी मिलंदासीं नए प्रोग्राम सां गॾु। सिंध सलामत, साथ सलामत, अलाह निगेबान।

0: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए। और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइश देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें।
1: It's 9 PM. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: कि आपका जो माजी है वो आपके किरदार की गवाही होता है कि मई 2022 में क्या हुआ और नवंबर 2024 में क्या हुआ। मुज़ाकरात से कोई गुरेज़ा नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात संजीदा होने चाहिए। मुज़ाकरात की बुनियाद ये है कि उन्हें रिहाई चाहिए अपने लीडर की। हमने बारहा कहा है कि उसका फोरम अदालतें हैं, हुकूमत नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन के बाद हुकूमत का रोल खत्म हो जाता है। जुडिशियल प्रोसेस के होते हुए आप कहें कि जी जलसे जुलूस से, एहतजाज से, शहरों पर चढ़ाई करके आपने ताकत का इस्तेमाल करके वो मकसद हासिल करने जो कि नहीं किया जा सकता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन।
5: हुकूमत पीटीआई से गालन का कदें भी इनकार नाहे कयो। पीटीआई गालन में लीडर जी आजादी चाहे थी, केतरा ही भेरा बुधाए चुका आयूं तो बानी जी आजादी हुकूमत सा न पर अदलिया सा गंठियल है। कानून और वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ पीटीआई के संजीदा गालन जो मशवरो डींदे है तो गालन के बानी की आजादी से मशरूत करण वो अमल ठीक ना है। वह चाहन था तो जलसन जलूसन जरिए बानी के आजाद कराजे जो मुमकिन ही ना है। सुप्रीम कोर्ट बानी के चकास जो हुक्म दिनो हो जो थी वो हुकूमत अमल में खोट है तो अदालत के ही दिसणो है। जलसन जलूसन से कुछ न थी दो।

0: अंदरां ई आवाज़ उतरण शुरू थी विया। तहरीक इंसाफ जे मर्कज़ी तर्जुमान शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी खे लॉन्ग मार्च अणॼातल मुदे ताईं मुल्तवी करण जो मशवरो ॾेई छॾियो। शौकत यूसुफ़ज़ई पार्टी चेयरमैन मिनिस्टर गोहर खे लिखियल ख़त में चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत कुझु इशूज़ खे जवाज़ बणाईंदे के पी में एमरजेंसी लागू करणु चाहे थी। रियासत सां टकराव बदिरां ॻाल्हियुनि लाइ रस्तो हमवार कयो वञे। चेयरमैन मिनिस्टर गोहर चयो आहे त पीटीआई जे लॉन्ग मार्च जो फ़ैसिलो बरक़रार आहे। के पी असेंबली खे टोड़ण जो को बि इरादो नाहे। सुहेल आफरीदी खे नाहिल करार नथो ॾेई सघिजे। मुतबादिल ते बि मुशावरत नाहे थी।
1: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी की है, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं बढ़ के मारते हैं। मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की होगी तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
2: पीटीआई में मार्च करण की हिम्मत ही ना है। 4 अक्टूबर से भी लॉन्ग मार्च न थो, मार्च थेण हो तो 27 सेप्टूबर से ही थी वे। हाँ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के कंट्रोल करण पीटीआई की वस की गाल ना है। डायलॉग हणण से कुछ न थींदो, कम करणो पवंदो।
0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां लंडन स्टॉक जो दौरो, ओपन मार्केट की तकरीब में शिरकत। तकरीब के खिताब कंदे शहबाज़ शरीफ चयो तो पाकिस्तान मईशत के मजबूत करण लाइ घणो कम कयो आहे। मईशत जे माइक्रो इस्तेकाम बाद मैक्रो इस्तेकाम ते कम करे रहिया आहियूं।

0: पाकिस्तान जी अमन वाली ख्वाहिश के कमजोरी न समझो वे अफगान सरजमीन तंदड़ हर हमले जो भरपूर जवाब दिनों वो सुतसमा वे वजीर अता ताड़ है त अफगान तालिबान रजीम के दहशतगर्दी वे माइंड सेट में निकलो पवन्द अफगानिस्तान में दहशतगर्दन जहा थाक मौजूद है अफगानिस्तान जहा घा मसला अस्क्रियत पसंदाने सोच जो नतीजो है अफगान आवाम के पैं मुस्तबिल बाबत फैसलो कर हक मिलन घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नस्त रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।

0: 0-600-16-23-793.
1: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
2: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
3: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं। नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जनरल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक शाही बाजार मेहरापुर 03000-310-5109, 03000-310-5109।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03-20-18-00-003।
5: फॉरवर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन खैरपुर में बीएड 1.5 साला बीएड 2.5 साला जो दाखिलाऊं शुरू थी वयूं आहिन। जेकॾहिं तव्हां जो ख्वाब उस्ताद बणजण आहे त ही बेहतरीन मौक़ो हथनि मां न वञायो। हाणे सिंध हुकूमत जे तालीमी शोबे सां लाॻापियल केतिरनि ई नौकरियुनि लाइ बीएड डिग्री लाज़मी बणजी रही आहे, तंहिं करे अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे टीचिंग कैरियर खे मज़बूत बुनियाद ॾियो। सिंध जे कंहिं बि शहर या ज़िले सां वास्तो हुजे, तव्हां आसानी सां दाख़िला वठी सघो था। असां वटि मौजूद आहिनि एयर कंडीशन क्लास रूम्स, हाई स्पीड वाई फाई, तजुर्बेकार ऐं सीनियर फैकल्टी, मयारी तालीमी माहौल। खास ऑफर महदूद वक्त लाइ आहे, तंहिं करे अॼु ई राबितो करियो। ऑनलाइन अप्लाई लाइ forwardcollege.pk वधीक ॼाण लाइ 03042827274। ऑफिस टाइम सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं। एड्रेस गुलशन यासीन कॉलोनी ताज पेट्रोलियम सर्विस जे साम्हूं वापड़ा कॉलोनी खैरपुर। अॼु ई दाख़िला वठो, पंहिंजे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ बणायो ऐं हिकु कामयाब उस्ताद बणजण ॾांहुं पहिरियों क़दम वधायो।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

چھڑی ساغ کڈھی عشق میں نواب اکلانی چلے او جے سفر

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। मेहरापुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुश खबरी, पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज़ जे खर्च खां बचो। A1 आटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहरापुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद करियो। स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिणु मौजूदु आहे। उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾोगॾु A1 आटोज थरी रोड मेहरापुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, पेट्रोल लोडर, रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिणु दस्तियाब आहिनि। राब्ते लाइ मलिक खुशी मोहम्मद 03023295894 ऐं फेस मोहम्मद पहियार 03003118956। A1 आटोस मेहरापुर, नालो आहे एतमाद जो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह, हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: देखिए मार्च ये इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, इन्होंने मुलतवी किए हैं, ये मार्च नहीं कर सकते हैं। अब ये जो है डेफिनेटली मीडिया पे आते हैं बढ़ के मारते हैं, मैं कहता हूँ कैपेसिटी नहीं है मार्च करने की, अगर इनकी कैपेसिटी मार्च करने की हो तो 27 को हो जाता, 4 को भी नहीं होगा।
1: पीटीआई में मार्च करण की हिम्मत ही ना है, 4 अक्टूबर से भी लॉन्ग मार्च न थो, मार्च थियण हो हाँ तो 27 सेप्टूबर से ही थी वे हाँ। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो चवण है तो केपीए में दहशतगर्दी के कंट्रोल कर पीटीआई की वस की गाल ना रही, डायलॉग हणन से कुछ न थो कम करण पवो।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां लंडन स्टॉक जो दौरो, ओपन मार्केट की तकरीब में शिरकत। तकरीब में खिताब कंदे शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान मईशत के मजबूत करण लाए घणो कम कयो आहे, मईशत जे माइक्रो इस्तेकाम बाद मैक्रो इस्तेकाम ते कम करे रहा आहियूं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।